फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के अषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026 इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी को सुप्रभात।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे

0: बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम 102.6 MHz पर। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इसमें आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में ये मातृवंदना।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना और आइए। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये भजन। इस भजन को लिखा है श्री नानक देव जी ने और संगीतबद्ध किया है मुरली मनोहर स्वरूप ने।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफ एम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप कार्यक्रम अर्चना सुन रहे हैं। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक भजन स्वर और संगीत पुरुषोत्तम जाट पुरुषोत्तम दास जलोटा का है।

शुदा हो आपके अपने रेडियो सेट पर, आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए कार्यक्रम अर्चना के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं एक और पारंपरिक भजन। इसे आवाजें दी हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने।

और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम अर्चना यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें, हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका हम आपको आज 50वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा भूपेंद्र सिंह का। भूले बिसरे गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का ये

कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से। कृषि संगीत कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जैविक खेत नियंत्रण। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। हम अपने श्रोताओं के पसंद की फिल्मी गीत सुनवाएंगे कार्यक्रम मचा है गीत में सुबह 7:20 पर। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा सुबह 7:45 पर। सुबह 8:15 का समय होगा बुंदेली लोक गीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। भोपाल केंद्र से सुबह 8:30 पर हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 9 बजे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा सुबह 10 बजे। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोक गीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोक गीत सुने इसका पुनः प्रसारण। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। 11:30 से मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 बजे भोपाल केंद्र से आप सुन सकते हैं इस घंटे की सुर्खियां। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:02 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर।

एफसी सेवा के कार्यक्रम सदाबहार गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा। शाम 6:30 पर इसमें आप सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम लोक रंग आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 7:20 पर। फिल्मी गीतों से लबरेज कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। संगीत सरिता कार्यक्रम का लुत्फ लिया जा सकता है रात 8:20 पर। कार्यक्रम मनचाहे गीत में हम अपने श्रोताओं के पसंद के फिल्मी गीत सुनवाएंगे रात्रि 9:00 से। और रात्रि 9:30 से मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिएगा, अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका आज हम आपको 50वां भाग सुनवा रहे हैं। गायक स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक मायानगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस मायानगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

अभी आप रामचरितमानस का संगीतमय पाठ का 50वां एपिसोड सुन रहे थे। गायक स्वर था भूपिंदर सिंह का। यह आकाशवाणी के सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके रेडियो स्केल पर और जिस पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण। और हम आपको बता दें, समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत पेश है गुजरे जमाने के चंद फिल्मी गीत। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत।

0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतबद्ध किया था सरदुल सिंह क्वात्रा ने। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
0: श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट पर ट्यून किए हुए हैं आकाशवाणी सागर FM में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ हम आपको बता भी दें कि आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप अपने मोबाइल पर आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आइए, कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों में से एक गीत हमने चुना है दो उस्ताद फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। कमर जलालाबादी का ये गीत है और संगीत है ओपी नैयर का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। लीजिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये अगला गीत जो आपकी यादों में ताजगी भर देगा। मंजिल फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और इसकी तर्ज बनाई है SD बर्मन ने।

और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।

0: वेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते.
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार सन्धि निष्पक्षम न्यायसंगतम संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयो सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति. भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति. दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते. पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते. विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते. अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति. फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्. जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति. भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः.
2: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर. इस वक्त हम आपको बता दें हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं. लीजिए अब सुनिएगा हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का कार्यक्रम सुबह सुबह. एक और नई सुबह के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है. श्रोताओ, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं. यही दोनों गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त साबित होते हैं. बिना इसके हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है. ये आत्मविश्वास केवल आपके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही प्राप्त होते हैं. यदि आपके पास ये दोनों गुण हैं तो आपने अपने लक्ष्य के रूप में जो भी तय किया है तो वो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त रह सकते हैं. यह आपके जीवन और कार्यों में सफलता के लिए आपको आवश्यक मजबूती प्रदान करते हैं. केवल इतना ही नहीं बल्कि आप अपने सामने आने वाली प्रत्येक बाधाओं पर काबू पाने के लिए आप अपने आत्मविश्वास को महसूस भी कर सकते हैं. यदि आपके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति है तो कोई भी लक्ष्य

आपके लिए असंभव नहीं है और आप पहले से और अधिक मजबूत और बेहतर होते जाएंगे। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही तय करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे। इन दोनों के बिना कोई भी लक्ष्य दूर के सपने जैसा लगता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में इन दोनों गुणों का होना बहुत जरूरी है। ये बात स्पष्ट है कि आप अपनी क्षमताओं पर जितना अधिक दृढ़ विश्वास रखेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही अधिक बढ़ेगा। यदि इच्छा शक्ति आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और आपको एक अद्भुत सफलता की ओर आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही आपकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का काम भी करती है। लोग आपके बारे में क्या और किस प्रकार की बातें करते हैं, ये इसी बात से प्रदर्शित हो जाता है। यदि आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ है तो आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे और आपके दृढ़ संकल्प की क्षमताओं का सम्मान भी करेंगे। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा ऐसे भी लोगों में लोकप्रिय होंगे जो आपकी तरह आत्मविश्वास से भरे होंगे। बिना इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के जीवन भ्रामक और निराशा से भरा होता है। जीवन का सच्चा अर्थ यही है कि एक लक्ष्य तय कर उसे आत्मविश्वास के बल पर प्राप्त करें। जीवन को सफल बनाने के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जीवन के हर चरण और हर पेशे में इनकी आवश्यकता होती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प स्थायी नहीं होते। इसके लिए आपको अपनी मानसिक और शारीरिक अंगों को हर तरीके से उपयोग में लाना होगा। आपकी इच्छा शक्ति हमेशा एक जैसी बनी रहे ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको खुद को प्रेरित करते रहना होगा। इसके लिए हर सुबह उठकर आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है। आपकी ये प्रेरणा ही आपके दृढ़ संकल्प लक्ष्य की प्राप्ति में परिवर्तित हो जाएगी।

0: सुबह सुबह, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इसमें हमारा आज का विषय है जैविक खेत नियंत्रण। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी।
1: सामान्य तौर पे किसान भाई जब भी उनके खेतों में किसी प्रकार के रोग होते हैं या कीड़े होते हैं, उनके लिए रासायनिक जो कीटनाशी हैं या फफूंदनाशी हैं, इनका उपयोग करते हैं। जब हम लगातार इनका उपयोग करते रहते हैं या एक ही प्रकार के कीटनाशी का या एक ही प्रकार के फफूंदनाशी का बार बार उपयोग करते हैं, तो इससे कीड़ों में या जो भी बीमारियां हैं उनमें एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो बीमारियों के रोगाणु हैं उनमें और जो कीट व्याधियां हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होती है। जैसे हम देखें, फफूंदी जनित रोग उकटा जो लगता था, जो फ्यूजेरियम से होता, फ्यूजेरियम के बजाय जो दूसरा उकटा लगने लगा है वो राइजोक्टोनिया से लगने लगा। इसी प्रकार से पहले जो कई प्रकार के कीड़े, जैसे सफेद मक्की है या अन्य जो कीड़े हैं, जैसे आपका मिलीबग है, मिलीबग का प्रकोप पहले आम में या बहुत कम होता था, अब कई प्रकार के पौधों में सफेद सफेद रंग का रस चूसा कीट लगता है। तो ये बार बार जब हम एक ही प्रकार के कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो उससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और फिर वो उन कीटनाशियों से नष्ट नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हमें जो जैविक नियंत्रण के उपाय हैं या जो कृषिगत नियंत्रण के उपाय हैं, अगर वो हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कम लागत में, कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ होता है और जो भी हमारा उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो रसायनों से मुक्त होता है। तो इसलिए जो है जैविक नियंत्रण की जो विधियां हैं, किसान भाइयों को पूरे वर्ष की प्लानिंग करके शुरुआत से ही इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हो सकता कि कीड़ों की या जो बीमारी की जो अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था, जो नुकसान की अवस्था है, उससे नीचे रहेगी। तो हो सकता है उनको रसायनों के उपयोग का मौका ही ना आए कि रसायनों का उपयोग करना। जैविक नियंत्रण से तात्पर्य है कि प्रकृति में मौजूद जो भी वनस्पति हैं या जो भी जीव हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, उनसे हम कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करें। जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सारे फफूंद या जीवाणु जनित उत्पादों को बनाया गया है जो कीट नियंत्रण में बहुत ज्यादा कारगर है। इसी प्रकार से कीट नियंत्रण में भी कुछ पौधों से प्राप्त उत्पाद हैं, कुछ जीवाणु प्रकृति के हैं, कुछ फफूंदी प्रकृति के हैं और कुछ पूरे के पूरे पौधे के भाग ही हैं, जिनका छिड़काव करके, जिनका उपयोग करके हम कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि रसायनों के बिना उपयोग के हम कीट व्याधियों को नियंत्रित करते हैं, वो जैविक कीट व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत। ज्यादातर जो पौधों की बीमारियां हैं वो या तो मृदा जनित होती हैं, मिट्टी में फफूंद रहते हैं, और या बीज के माध्यम से रोगाणु पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो जो बीज के माध्यम से होती हैं या जो मिट्टी के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं, खासतौर से फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पीथियम, स्क्लेरोशियम, ये बहुत सारे जो फफूंद है वो जमीन में रहते हैं या बहुत सारे जीवाणु जो है वो जमीन में रहते हैं और जब हम फसल को बोते हैं तो उस पर वो उन रोगों के लक्षण दिखाई दे। ये कंडवा बीमारी बालियों में दिखाई देती है लेकिन ये मूल रूप से बीज और जमीन के माध्यम से पौधों में पहुंचती है। उकटा के जो रोगाणु है वो जमीन में रहते हैं, जब पौधे की बोनी पौधा जमता है तब जाके ये फूल आने की अवस्था पे बीमारी आती है। अदरक में लगने वाली बीमारी है, राइजोम रॉट है, या अरबी में लगने वाला फाइटोप्थोरा है, या अरहर में या तिल में लगने वाला फाइटोप्थोरा बीमारी, ये सब बीमारियां जमीन के माध्यम से होती। तो जमीन में रहने वाले जो फफूंद है उनके लिए जो जैविक फफूंद नाशी है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या स्यूडोमोनास या ग्लोमस स्पीसीज, इनके जो दवा जैविक फफूंद नाशी मिलती है, इनका हम बीज उपचार के रूप में 5 ग्राम से 10 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज का उपचार करें। सब्जियों में अगर समस्या आप आती है तो सब्जियों की जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, जिनके पौध तैयार की जाती है, पौधशाला में ही हम 10-12 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के जितनी भी अपनी पौधशाला है उसमें ज्यादा मात्रा में हम उत्काल के पौधशाला ट्राइकोडर्मा को या स्यूडोमोनास को डाल सकते हैं। जो बड़े खेत दलहनी फसलें जहाँ पे खासतौर से लेते हैं वहाँ पे उकटा की जो समस्या है या आलू में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए है, तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास को हम 1 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद में मिला के गीला करके उसको 10-12 दिनों के लिए रख दें और इसके बाद जब खेत में नमी हो तो शाम के समय उसको खेत में बिखेर के और बखन्नी करके उसको जमीन में मिला दें। तो ये
0: जैविक खेत नियंत्रण, इस विषय पर अभी आपकी जानकारी सुन रहे थे, हमें जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को देंगे विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फैद कॉन्क्लेव 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने से बड़ी चिंता, आज कई जगह चेतावनी। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय फैद कॉन्क्लेव 2026 में सम्मिलित होंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन

0: एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय अतुल्य भारत अमूल्य अर्थशास्त्र है। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय उन्नति को गति देना है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के इस शीर्ष निकाय के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति मध्य प्रदेश में पर्यटन निवेश और विकास की नई संभावनाओं को रेखांकित करेगी। वहीं डॉक्टर यादव भारत टेक्स 2026 में शामिल होंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीति और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आह्वान किया कि वे राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर केंद्रित रील्स बनाए ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
1: एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडीचा मंदिर में होगा। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त होने पर कल इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया और उनका आत्मीय स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बधाई प्रदान की। इस दौरान राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पदोन्नति मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर रणनीति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल ग्लोबल चिप डिजाइन सर्विसेज का केंद्र रहने के बजाय अपनी खुद की बौद्धिक संपदा और उत्पाद बनाने वाली कंपनियां खड़ी करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि
2: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: समाचारों में फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। IRCTC ने रेल यात्रियों को बेहतर और तेज टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे ट्रायल के तौर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। नए पोर्टल में 4 बड़े सुधार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यात्रियों को बेवजह के कैप्चा, पॉपअप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स से राहत मिलेगी। इसके साथ ही अब यात्रियों को सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता की जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी और पैसेंजर डिटेल्स सेव रहने से बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के नगरीय विकास को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,753.10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर IAS संकेत भोंडवे के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते दिल्ली की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति मिली। इस योजना से इंदौर, जबलपुर और रीवा में आधुनिक जल प्रदाय और सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण होगा। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से काल भैरव और मंगलनाथ सहित 11 ऐतिहासिक मंदिर परिसरों का कायाकल्प कर भव्य कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने से कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की चिंता बढ़ रही है। वहीं तेज गर्मी और भीषण उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई मजबूत सिस्टम

सक्रिय नहीं है, जिससे अगले कुछ दिनों तक केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि आगामी 19 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। फिलहाल आज बैतूल, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और मंडला सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि शेष जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडवेस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का अनिवार्य बीमा कराने की अपील की गई है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण कर देरी से आए 2 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिया। आगरमालवा जिले में सिंहस 2028 के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कलेक्टर और SP ने प्रस्तावित पड़ाव स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। जबलपुर जिले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा आज धूमधाम से शुरू हुई। अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वह जनसुनवाई और स्व सहायता समूह से संवाद करेंगे। नर्मदापुरम जिले में जगदीश मंदिर और डोंगरावाड़ा धाम से भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा आज भव्य नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। भोपाल जिले में जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। रायसेन जिले के सांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का PM मोदी कल शुभारंभ करेंगे। पन्ना जिले में श्री जुगल किशोर सरकार धाम में भव्य कलश यात्रा के साथ 15 दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण महोत्सव शुरू हुआ। इंदौर जिले में SC/ST वर्ग के होनहार अभ्यर्थियों के लिए MPPSC 2027 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मंडला जिले में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह और पायलट मशरूम फार्म कंपनी के बीच महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ। गुना जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे फोड़ने वाली बुलेट और अवैध हुटर लगाने वाले वाहनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। दमोह जिले में कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 6 शराब दुकानों को सील कर दिया है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत और लंबित आवासों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की समीक्षा की गई। शाजापुर जिले में युवाओं को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, यह आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत का ये पहला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना। फिल्म का नाम चिराग और इस गीत को शब्द दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं, ये पत्र हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, साथ ही कुछ व्हाट्सएप भी हमें मिले हैं। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर, बेबी प्रियांशी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजूला राठौर, विशाल निशा, गांधीनगर गुजरात से ये हैं। साथ ही बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल और पीवी कुलथे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपने मोबाइल पर आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हैं कार्यक्रम मनचाही गीत। और आइए, आपका अगला मनचाहा गीत हाजिर है गंगा की लहरें फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाजों में हैं बोल एक बार फिर मजरू सुल्तानपुरी के, लेकिन संगीत है चित्रगुप्त का। और अनुरोधकर्ता आप सभी हैं। ये पत्र हमें मिला है नेपाल पैलेस सागर मध्य प्रदेश से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉविन, शिवा, शिवांशु, रामदास, यश, अवधेश सक्सेना, पंडित रमेश कटौदिया, रमाकांत दुबे, सुजीत प्रमोद। और ये व्हाट्सएप है नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरद जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से ये हमें व्हाट्सएप मिला है। और इन व्हाट्सएप में जो नाम हमें मिले हैं वो हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी, हिनी हिना कौसर, डाबरी रोड अकोला से, महाराष्ट्र से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। तो आइए सुनते हैं गंगा की लहरें फिल्म से ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: श्रोताओं, ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम मन चाहे गीत। और आइए, अगला गीत हमने चुना है सौतन फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। सावन कुमार के ये लफ्ज हैं और उषा खन्ना का ये संगीत है। और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। कंवर कॉलोनी बड़वा से ये हमें पत्र मिला है। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। और ये व्हाट्सएप है, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा गुजरात गांधीग्राम से, प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मारकंडे, संजय मारकंडे बेबी किट्टो, और ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: और आइए श्रोताओ, इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं पापा कहते हैं फिल्म में उदित नारायण की आवाज। इस गीत को शब्द दिए हैं जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमारे पास है छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंग रेडियो छोटा संघ, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से हैं ये। और ये हमें व्हाट्सएप मिला है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: जो कुछ

0: सिस्टम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और लीजिए, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ये गजल पंकज उदास की आवाज में। जफर गोरखपुरी ने इस गजल को लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

कीजिए बातें। और श्रोता, इसी गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, आपसे थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अंबिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे

0: कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
1: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
2: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
3: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
5: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
6: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत।

0: कॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है, सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है, जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर चुना है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए, अब सुनिएगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

बाजरा फटकू बाजरा फटकू, मोरे मन में ऐसी आई के नैन दूला के दद्दा खा, उठा उठा पटकू। एक बेर, दो बेर, तीन बेर, साढ़े तीन बेर, का दूला के दद्दा राजी हो के नहीं हाओ।

बाजरा फटकू बाजरा फटकू, मोरे मन में ऐसी आई कि दूल्हा के जीजा खां उठा उठा पटकू। एक बेर, दो बेर, तीन बेर, साढ़े तीन बेर, का दूल्हा के जीजा राजी होके नहीं।

बाजरा फटू बाजरा फटू मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के मम्मा खां उठा उठा पटकू। एक बेर दो बेर तीन बेर साढ़े तीन बेर काय दूल्हा के मम्मा राजी होके नहीं।

बाजरा फटकू मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के भैया खा उठा उठा पटकू। एक बेर, दो बेर, तीन बेर, साढ़े तीन बेर, कहा दूल्हा के भैया राजी हो के नहीं हाओ।

बाजरा फटकू मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के फूफा खा उठा उठा फटकू एक बेर दो बेर तीन बेर साढ़े तीन बेर का दूल्हा के फूफा राजी होके नहीं हाओ

0: कार्यक्रम लोक संगीत का ये पहला हास्य गीत आपने सुना मालती सेन की आवाज में।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: आकाशवाणी के हम सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आइए कार्यक्रम लोक संगीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं राम मूर्ति तिवारी की आवाज में ये लोकगीत।

0: भौरा। ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए कार्यक्रम लोक संगीत के अंत में। अब हम आपको सुनवाते हैं प्रीतम सिंह ठाकुर और उनके संगीत साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।
1: बंदी मुठी है लाख की, खुल गई है सुखा की।

श्रोताओ, अभी आपने ये कहरवा सुना प्रीता सिंह ठाकुर और उनके संगी साथियों की आवाजों में, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है गणेश घोष। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से SM मित्तल और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कालखंड अपने सामाजिक और राजनैतिक ताने बाने से, अपने तेवर और तासीर से अपनी भाषा चुनता है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का समय एक ऐसा आंदोलित समय था जिसने अपने लिए एक विशेष भाषा गढ़ी। इस भाषा में तलवार सी चमक थी, दुश्मन के लिए हुंकार थी, मातृभूमि के लिए त्याग था और जनमानस के लिए जागरण का मंत्र। शब्द जो सुनाई देते हैं उनका वास्तविक घर मनुष्य का अंतर्मन होता है। यहीं से वो समय का स्वभाव बदलते हैं, यहीं से वो इतिहास की दिशा बदलते हैं। एक ऐसे ही शब्द साधक थे बाबा कांशीराम, एक ऐसे जनकवि जिनकी कविता केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं थी, वो स्वाधीनता की आकांक्षा, स्वाभिमान की चेतना और राष्ट्र प्रेम का स्पंदन थी। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और कवि थे जिनका संपूर्ण जीवन भारत को समर्पित था। बाबा कांशीराम का जन्म 11 जुलाई सन 1882 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के डाडासीबा के गांव पदियाली में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित लखनूराम और माताजी का नाम रेवती देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह सरस्वती देवी के साथ संपन्न हुआ। शिक्षा के साथ साथ कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो बचपन से ही चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लोकगीत गाया करते, नाटक तथा रामलीला में भाग लिया करते थे। जब बालक कांशीराम मात्र 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और एक वर्ष बाद ही उनकी माताजी भी चल बसीं। इसके बाद वो अपने बड़े पिताजी के साथ रहने लगे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नूरपुर के एक वकील के पास मुंशी की नौकरी कर ली, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा। उन दिनों पूरे भारत में स्वाधीनता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वातावरण का प्रभाव उनके कोमल मन पर भी पड़ने लगा।

किशोरावस्था से ही कांशीराम को आंदोलन, स्वराज और क्रांति जैसे शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे थे। सन 1902 में वो अपने एक मित्र के साथ लाहौर चले गए। यहाँ वो कांगड़ा के उन युवकों से मिले जो रोजगार के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ के साहूकार उन युवकों का खूब शोषण कर रहे थे। इस बात से वो अत्यधिक व्यथित हो गए। यही वो घटनाएं थीं जिन्होंने उनके भीतर क्रांति के बीज बोए, स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। बाबा कांशीराम यूं तो अपनी आजीविका कमाने के लिए लाहौर आए थे, लेकिन तत्कालीन घटनाओं ने उन्हें स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं के संपर्क में ला दिया। उन दिनों जिन स्वाधीनता सेनानियों से उनकी भेंट हुई, उनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, सूफी रमजाहिद शाह, सरदार अजित सिंह आदि। इन देशभक्तों ने बाबा कांशीराम को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। लाहौर में रहते हुए उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये वो समय था जब पंजाब की फिजाओं में एक गीत अंगारा बन के तैर रहा था, पगड़ी संभाल जट्टा। इस गीत के रचयिता बांके दयाल और महान देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद तथा लालचंद फलक से जब उनकी भेंट हुई, तब उनके भीतर का सोया हुआ कवि और संगीतकार जाग उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब स्वर केवल राग रागिनियों के लिए नहीं, बल्कि आजादी की जंग के लिए साधे जाएंगे। उन्होंने पहाड़ी भाषा में देशभक्ति की मर्मस्पर्शी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। इसी बीच सन 1905 में कांगड़ा में तेज भूकंप आया, भारी क्षति हुई। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां राहत कार्य आरंभ हुआ। बाबा कांशीराम भी इसमें सम्मिलित हुए। इसी समय लाला जी से उनका संपर्क बढ़ा। सन 1908 में लाला हरदयाल के सानिध्य ने उनके भीतर देश को आजाद कराने की छटपटाहट को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। सन 1911 में वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का दिल्ली दरबार देखने पहुंचे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की योजनाएं पक रही थीं। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया। बाबा कांशीराम के कई साथी बिखर गए, वो खुद भी पुलिस की नजर में आ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कुछ समय तक भूमिगत भी रहे। अंग्रेजों के बढ़ते दमन चक्र ने उनकी लेखनी को और भी धारदार बनाया। सन 1917 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो बहुत भारी मन से वो अपने गांव पदियाली लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने बड़े पिता की दुकान में हिस्सेदारी कर ली। दुकानदारी के काम में सामान लेने के लिए उन्हें अक्सर होशियारपुर और अमृतसर की मंडियों के चक्कर काटने पड़ते थे। 13 अप्रैल सन 1919 को वो दुकानदारी के काम से अमृतसर में ही थे जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बौछार करवा दी। चारों ओर चीख पुकार, खून से सनी माटी और जान बचाने के लिए कुएं में कूदते लोग। इस घटना ने बाबा कांशीराम को स्तब्ध कर दिया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बाबा कांशीराम के भीतर देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का संकल्प कर लिया और गांधी जी के सच्चे अनुयायी बन गए। अब बाबा कांशीराम एक जलती हुई मशाल बन चुके थे। वो गांव-गांव जाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहाड़ी गीतों के माध्यम से क्रांति का बीज बो रहे थे। अंग्रेज सरकार भाप गई कि ये कोई साधारण कवि नहीं है। सन 1920 में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन इस जेल यात्रा ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। जेल से छूटते ही वो दुगने वेग से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर धर्मशाला और गुरदासपुर की जेल भेज दिया गया। यहां उन्होंने 2 साल तक अमानवीय यातनाएं सही। उन दिनों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी मांडले जेल से धर्मशाला जेल लाया गया था। सन 1922 में लाला लाजपत राय को भी लाहौर से धर्मशाला जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। इस तरह अनेक स्वाधीनता सेनानी इस जेल में बंद थे, जिनका बहुत गहरा प्रभाव बाबा कांशीराम पर पड़ा। अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक कविताएं लिखीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1931 में जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई तो बाबा कांशीराम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आजीवन काला वस्त्र धारण कर ब्रिटिश सरकार से जूझने का व्रत ले लिया। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने केवल काला वस्त्र ही धारण किया तथा मृत्यु के बाद उनके कफन का रंग भी काला ही था। आजीवन काला वस्त्र धारण करने के कारण वो स्याहपोश जर्नैल कहलाए। एक सभा में उनके स्वाधीनता आंदोलन संबंधी गीतों और कविताओं को सुनकर सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने सुरीले कंठ से कविताएं गा गाकर स्वतंत्रता का संदेश कांगड़ा के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और अनेक बार गिरफ्तार हुए। वो गांधी जी के ऐसे अनुयायी थे कि उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया। वो लगातार गांव-गांव घूमते रहे, पहाड़ी भाषा में आजादी के गीत और कविताएं सुनाकर लोगों को जगाते रहे। आजादी के परवानों के लिए उन्होंने लिखा, भारत माँ जो आजाद कराने ताई, मावा दे पुत्र चढ़े फांसियां, हंस दे आजादी दे नारे लाई। वो स्वयं को केवल एक भारतवासी की दृष्टि से ही देखते थे। जाति धर्म का कोई अर्थ उनके लिए नहीं था। एक भारतीय होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तभी तो उन्होंने कहा, मैं कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा, भारत माँ है मेरी माता, ओ जंजीरा जकड़िए, ओ अंग्रेजा पकड़िए, उसनु आजाद कराना। उनकी कविताओं में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के स्वर सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, कांशीराम जिंद जवानी, जिंद बाज दी लाणी, एक को बार जमना, देश बड़ा है कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश दी, कुलजा मत्था टेकी कने, इनकलाब बुलाना। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं, 8 कहानियां और 1 उपन्यास लिखा। इस तरह उन्होंने अपनी लेखनी से हमेशा देश, धर्म और राष्ट्रीयता का स्वर बुलंद किया। आजादी का स्वप्न लिए हुए ही 15 अक्टूबर सन 1943 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका वो सपना जैसे हवाओं में तैरता रहा। आओ रली मिली सारे, हिंद जो आजाद कराइए, नरक बनी गया देश असंदा, फिर तो सूरत बनाइए। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में जॉली LLB 2 फिल्म का गाना। जुनैद वसी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए नीति मोहन की आवाज में पद्मावत फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा है गीतकार और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो कर यूं ही चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने क्यों ना हम वापस करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
7: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
6: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में।

0: 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजों में 102 नॉट आउट इस फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के हैं बोल और तर्ज अमिताभ बच्चन की।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में ज

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2000

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक

2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना

वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आई विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई, वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर रत्नेश सोनी।

जिले में इस समय मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बादलों की अटखेलियों से मौसम दिलकश हो गया है और सैलानियों का तांता लग गया है। खेतों में खरीफ फसलों की बुआई और जल संरक्षण की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने आगे भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बाढ़ प्रबंधन, जल भराव वाले इलाकों की निगरानी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सहित राहत तैयारियां मुस्तैद कर दी गई हैं। हालांकि जिले में प्रवाहमान मां नर्मदा में भी अभी तक जल प्रवाह अत्यधिक नहीं हो पाया है। खेती किसानी की बात करें तो जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी जारी है। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले वार्जन के लिए 132 केंद्र बने हैं, जहां मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को नियमित निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रशासनिक मोर्चे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, आयुष्मान वंदना और सिकल सेल एनीमिया जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों को बैंक लोन से जोड़ने, महिला समूह को खादी गतिविधियों से स्वरोजगार देने और आउटसोर्स सफाई कर्मियों को नियमित वेतन देने के निर्देश दिए। साथ ही SC/ST अत्याचार निवारण मामलों में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की कमी के कारण पीड़ितों की राहत न रोकने तथा नर्मदा नदी में गिरते गंदे पानी पर नगर पालिका को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत सभी 425 ग्राम पंचायतों में हर बुधवार और शनिवार को मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। इनमें सिकल सेल, मलेरिया, डेंगू और ब्लड शुगर सहित 14 प्रकार की जांचें मुफ्त हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आकाशीय बिजली से बचाव के लिए प्रशासन ने प्रदेश में पहली बार प्रोजेक्ट दामिनी शुरू किया है। इसके साथ ही मलेरिया की रोकथाम के लिए लार्वा और फीवर सर्वे जारी है और लोगों को पानी जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन पर प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने वाटर हार्वेस्टिंग का आह्वान किया। इसी कड़ी में शुद्ध पेयजल के लिए सजल अभियान के तहत हैंडपंपों की सफाई और क्लोरिनेशन जारी है। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए मालाखेड़ी रेशम केंद्र को रोजगार और पर्यटन केंद्र के रूप में ढाला जा रहा है और रेशम की समृद्धि योजना में शहतूत पौधे लगाने को बढ़ावा मिल रहा है। नई पहल के तहत माखन नगर के MP एग्रो फॉर्म में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग शुरू की गई है, जिससे जिला मखाना हब बनेगा। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नवांकुर अभियान के तहत महिला समूह द्वारा सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। श्रवण वाक बाधितों के लिए अनुगूंज अभियान में संकेत वाणी ऐप की जानकारी दी जा रही है।

पीएम आवास योजना के तहत आवास प्लस 2024 सर्वे का भौतिक सत्यापन ग्राम सभाओं के माध्यम से जारी है। 26 जुलाई को 8वीं पचवड़ी मॉनसून मैराथन हुई, जिससे धावकों में भारी उत्साह दिखाई दिया और चलते चलते बाद खेल और आस्था की। आज 14 दिनों के अनासर काल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसके लिए प्राचीन जगदीश मंदिर और डोंगरवाड़ा धाम में तैयारियां पूरी हैं। इसके साथ ही 17 अगस्त तक चलने वाले प्रसिद्ध नागद्वारी मेले की तैयारियां भी पचमढ़ी में तेज हो गई हैं, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और पेयजल की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई है।

0: अभी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुष तिवारी का था और वाचन स्वर रत्नेश सोनी का।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा श्रोताओं की फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, लोकगीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: तो भैया हरो आप और के मन पसंद को कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम जो एक बार फिर से हमारे लेके आ गए हैं जो उनको नाम है फोन करें लोगी सुने।
1: और भैया रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच में स्वीकार करो हम दोइयों की राम राम।
0: और बिल्कुल देरी नहीं करने जैसे घर भैया
1: बिल्कुल ले थे जो पहलो फोन
0: बिल्कुल।
1: हेलो
2: हेलो
1: भैया फोन करें लोगी सुने में स्वागत है आपको, अपना नाम बता दो।
2: आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम बोल रहे हैं जमुना कुशवाहा ग्राम सरका खेड़ा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से।
1: सरका खेड़ा टीकमगढ़
2: जी।
1: जमुना भैया हमें कछु अपने गांव के बारे में बताओ और वर्षा ऋतु को कैसो का चल रहा है सो जा भी बता दो हमें।
2: सर वर्षा ऋतु बहुत बढ़िया चल रही, कल से पानी बरस रहा और सोयाबीन जमे आए।
1: हाँ हाँ।
2: और गाँव बड़ा था हमारा घोड़ा बड़ा गाँव के पास में है ककरवाहा रोड पे।
1: अच्छा अच्छा, तो भैया कितने जनसंख्या हुई है आपके गाँव में?
2: गांव में जनसंख्या 500 वोटिंग है सर।
1: हाँ हाँ भैया, हमने एक चीज देखी है कि पहले जब युवा होते आदमी लड़कपन होते तो ऐसा लगता है कि बड़े शहर की तरफ चलें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़त जाती है तो मानसिक शांति और सहजता सरलता जीवन में जिस सारी चीजें अपने गाँव में छोटे शहरों में बड़ी नोनी मिलत है, क्या कहो है आपको?
2: जो कहो है सर के जैसे जो उमंग होता है ना बाहर देखवे की सिटी शहर जावेगी।
1: हाँ हाँ।
2: फिर कुछ दिन में अपने गांव में ही सुकून मिला था, माँ बाप के पास अपनी खेती बाड़ी मेड़ पे घूमबो खेती। हाँ। किसानी की
1: अपने रिश्तेदारों के साथ। हाँ। सुख दुख में एक दूसरे को साथ मिल जाओ थे भैया। तो
2: बिल्कुल।
1: अब सबसे बड़ी चीज है भैया जिंदगी में शांति।
2: हाँ।
1: तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
2: हाँ पूछे सर जी, अगर बन गया तो।
1: बिल्कुल अटका बहुत ही मजेदार है
2: जी।
1: एक रूख झलरा ऊ के तरे बिलरा ऊ के तरे सुरकू ऊ के तरे हप्पू।
2: समझ में नहीं आई सर, एक बार और बताओ आप।
1: एक बार का हम भैया आपको और बता दे रहे हैं। एक रूख झलरा ऊ के तरे बिलरा ऊ के तरे सुरकू और ऊ के तरे हप्पू।
2: दिमाग नहीं पहुंच रहा वहां तक, नहीं बन रहा हम।
1: कोई बात नहीं भैया, अब हमें बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे।
2: लोकगीत तो सुनना हमें विजय सिंह ठाकुर की जमुनार।
1: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे विजय सिंह की गाई भाई जा जमुनार।

0: हेलो
1: हेलो, जय श्री राम सर।
0: जय श्री राम भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें लोग।
1: फोन करें लोग बीच में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अरविंद बोल रहे सर, मझगवा थाना से, तहसील बेवमन, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
0: अरविंद मझगवा थाना,
1: मझगवा सानी।
0: मझगवा सानी
1: जी सर।
0: विकास खंड को का नाम बताओ आपने?
1: बेगमगंज।
0: बेगमगंज जिला
1: रायसेन, मध्य प्रदेश।
0: चलो भैया, बहुत स्वागत है आपको। और अरविंद भाई
1: जी सर,
0: बताओ कहाँ चल रहे होते?
1: पानी गिर रहा सर, अभी तो बारिश बारिश।
0: अच्छा, कब से शुरू हुआ भैया जो पानी?
1: पानी तो दोपहर से गिर रहा सर।
0: नहीं, और एक पहले भी गिरो है पानी?
1: हाँ गिरो है सर, बोनी हो गई हमारे थे।
0: अच्छा देखो, सबके थे जो वर्षा होते भैया
1: जी,
0: ओ को हिसाब किताब जो है खेती से मिला थे आदमी के, खेती को जो पानी फायदेमंद है के ज्यादा है। लेकिन आपके इते की वर्षा के दो महत्व है, एक औरों को महत्व है, कछु बता सका था आप? हम काय की तरफ इशारों कर रहे
1: सर, हमें समझ नहीं आई।
0: देखो भैया, रायसेन जिले में जब बस्कारो होते
1: जी,
0: तो सागर जिले के लोग भगवान से विनती करते हैं कि रायसेन में अच्छी बारिश हो बे रायसेन जिले में
1: जी जी।
0: कैसे भैया, उते की बरसात से हमारे ते जो इते राजघाट बांध है ना
1: जी सर, आ गई समझ में,
0: बस नदी पे है ना
1: जी जी,
0: एको भराव होते भैया
1: जी सर।
0: तो ऐसा होते खेती के अलावा दूसरों महत्व जो है कि राजघाट से लाखों आदमियों की प्यास बुझत है
1: जी सर।
0: तो एक जो भी
1: हमारे मरखेरो बांध बनो सर, सैमरी जलाशय।
0: हाँ सैमरी जलाशय, सुनो है भैया
1: जी, 1500 एकड़ में सर अपने खेत से लगवा हुआ, खेती किसानी करते हैं सर हम भी।
0: तो खेती किसानी में उनको फायदा भी मिला था भैया?
1: हाँ सर, खेत से लगवा पानी, अपने सिंचाई बिचाई सब वही से चलाते।
0: चलो चलो, बहुत अच्छी बात है।

0: ये बोनी होनी कर दी आपने?
1: बोनी हो गई सर, सोयाबीन होगा 15 दिन को होगा।
0: 15 दिन को सोयाबीन होगा। खरपतवारों के लाने कछु सोची है आपने?
1: जी सर, किसान वाणी सुना थेंगे सर, सुन खेंगे राय ले कर।
0: चलो ठीक है भैया। और सोयाबीन के अलावा और कछु फसल सोई लगाई भैया का?
1: धान भाई है सर, वैसी लगाई तो नहीं है भाई, है धान है, अरहर है।
0: हाँ बा हम पूछवे बारे है तो ये सब भैया के अगर बांध आपके खेत के बगल से गाँव है तो उते धान शायद आप लगात हो है ना?
1: जी सर, हम तो बहुत हैंगे वैसी लगात नहीं है।
0: अच्छा वैसी रोपाई नहीं करा?
1: ज्यादा लगाते सर अपने।
0: हाँ तो रोपाई नहीं करा तो आप सीधी बोत हो?
1: बुआई कराते सर।
0: चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी आपकी खेती बाड़ी होवे। अब अरविंद भाई अपन आते हैं आज के अटका पे।
1: जी सर,
0: अटका हमेशा अपने जो श्रोता भैया बिन्ना हरे कहने लगा थे कि कठन होगा कर्रो होगा।
1: जी सर,
0: आज हम कह रहे हैं कि हाँ तना कर्रो है लेकिन दिमाग लगे हो तो बन जाए आपको।
1: जी सर, कर प्रयास।
0: हाँ तो जो है कि एक रूख झलरा
1: जी,
0: ओ के तरह बिलरा
1: जी,
0: ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू। एक रूख झलरा
1: जी,
0: ओ के तरह बिलरा
1: जी,
0: ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: चूलो तो नहीं है?
0: नहीं चूलो नहीं है भैया।
1: कैसे संबंधित है, थोड़ा संकेत दे सका सर?
0: जो संबंधित है जैसे आप अबे बातचीत कर रहे हो भैया और हम अबे बातचीत कर रहे हैं तो इनमें से ज्यादातर चीजें काम कर रही है।
1: टावर?
0: नहीं टावर नहीं है, मानव शरीर से जुड़ी भाई चीजें हैं।
1: तो बाल तो नहीं है सर सर के?
0: चलो बाल और बताओ बे, तो मुझको वो है भैया
1: बाल उसका कान आंखें।
0: चलो बहुत हद तक पहुंच गए, थोड़ा सो अब आप फोन रखवे के बाद और विचार करियो, आपको समझ में आ जाए है।
1: जी सर, और तो बनत भी नहीं है सर।
0: चलो चलो कोई बात नहीं, जो एक ही लाने आए के बनन लगे आदमियों को जानकारी होवे है ना।
1: जी सर।
0: चलो अरविंद भाई
1: फरमाइश। मुंह तो नहीं है सर?
0: हैं
1: मुंह?
0: हाँ चलो आपने लगभग टूटो फूटो पूरा उत्तर दे दो है, और अब बता दो फरमाइश।
1: चंद्रभूषा पाठक की आवाज में सुना रही जी, कोई देवी जी।
0: ले भैया आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है अरविंद भाई, आपको हम सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक और इनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।
2: मैया तोरी मड़िया में

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: हेलो
3: भैया, फोन करें, लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत कर रहे हैं आपको। अपनो प्यारो सुनाओ, बता दो।
4: हम बोला सर जी, प्रसाद लोटी ग्राम नया खेरा तहसील घुवारा जिला छतर पर से।
3: अच्छा, चलो भैया, बहुत ही अच्छी बात है। अपनो पूरा पतो एकदम से मौका आपने सुना दो है। तो सर जी भैया, करत का हो आप?
4: किसानी कहते हैं साहब।
3: तो अबे का चल रहा हो किसानी में?
4: अरे साहब, सोयाबीन धान मूंगफली की किसानी हो रही।
3: तो बरसात से कोई शिकायत तो नहीं है?
4: नहीं बरसात से कोई किसान की, अच्छा पानी बरसा हो अच्छी हिसाब से बोनी हो गई।
3: हाँ चलो भैया, अच्छी बात है कि हमें शिकवा शिकायत ना करके अपनी मेहनत पे ध्यान देने हैं। और कृषि प्रधान हमारा देश है, तो आप लोगों की इज्जत सम्मान पूरे देश करत है। और आप लोगों की तरफ देखा थे भैया कि आप कैसे अच्छो उपजाओ गेहूं, चावल और बाकी सारी फसलें मनो उगे संगे। एक जिम्मेदारी भी भैया आपके पास आ जात है के जो जैविक कृषि को है, एको इस्तेमाल अपन को ज्यादा करना है, जैविक कृषि करने हैं। काहे केमिकल वाली खादों से, केमिकल वाली दवाइयों से खुद को बचने हैं। काहे के भैया अपन जब दवाई डालते हैं खेतों में, तो वो अपने नाक में से होत भाई, मुंह में से होत भाई, फेफड़ों में चले जाते हैं।
4: खाद बनाया था जैविक खाद बना के?
3: हाँ भैया,
4: उसको छिड़काव करे जी।
3: बहुत ही अच्छी बात कही भैया, अपन को जैविक कृषि की तरफ चलने हैं, जिसे कई बीमारियों से अपन बच सकते हैं भैया।
4: जी जी,
3: तो बहुत ही अच्छी बात है। जो वालो संदेश भैया आप अपने संगी साथियों में भी फैलाओ कि भैया अपन को जैविक खाद बनाने हैं। और जैविक दवाइयां नीम की पत्तियों से भैया, और नीम की निबोरी से कितनी दवाइयां बन जाते हैं,
4: गोड़ से, सड़ी पत्तन से,
3: गोमूत्र से, गोमूत्र से खूब बन जाते हैं। हाँ, गोबर से सबसे बना था भैया। और इसमें मेहनत लगा था, मनो स्वाद अलग मिला था अपन को।
4: जमीन खराब नहीं हुई।
3: हाँ, तो अब भैया हम पूछ रहे हैं आपसे एक 900 अटका। अटका कह रहा है कि एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
4: समझ में नहीं आया,
3: एक बार फिर से सुन लो भैया। एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
4: हम पे नहीं बनने से
3: मनोज, सुनवे में तो मजा आगा आपको
4: जी।
3: तो भैया, जो अपने शरीर से जुड़ी कोई बात है?
4: शरीर से जुड़ी सही है।
3: हाँ चलो भैया, आपकी खुशी हमारे लाने भैया सबसे बड़ो सम्मान और सबसे बड़ो पुरस्कार होता है कि हमारे श्रोता खूब खुश हो जाए। क्या क्या जीवन में परेशानियां तो सभी के लगी भाई हैं। मनो थोड़ो सा अगर टाइम मिल जाए कि अपन हंस बोल लें, चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाए, तो तनाव रहित हो जाती है भैया। तो अब भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
4: उर्मिला पांडे को लोकगीत सुना दे कौन भी।
3: चलो भैया, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, और सुन लो अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन करें लोकगीत सुने।
0: बिल्कुल भैया, फोन करें लोकगीत सुने आकाशवाणी केंद्र सागर।
1: गुड्डू चौबे बोल रहे बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
0: गुड्डू चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक पहले कभी लगो तो आपको फोन।
1: 3 महीना हो गए अब तो, तुम तो देख ले बिल्कुल।
0: बिल्कुल भैया, देख लेते हैं। और कहाँ चल रहा हो वे?
1: अब बुआनी हो गए साहू जी, तो अब तो देखा ही देख चल रहे ढोर बछेरू देख जाओ थे, निगरानी कराते रहते हैं खेतों की।
0: अच्छा, ढोर बछेरों पे भैया एक चीज ध्यान आई गुड्डू भैया?
1: हाँ हाँ,
0: के बसकारे की हरियाई देख के अपने जो जानवर हैं एकदम से टूट पड़े हैं हरियाई पे।
1: हाँ हाँ, तो इंतजाम तो करे हैं अपने, तार माल लगाए हैं, बेरगवाई बेरगवाई लगा दे थे।
0: हाँ भैया, ना फिर उनको दस्त दस्त लग जाते, पोंकन लगाते हैं तो फिर दिक्कत होती है।
1: ओ, नहीं जी, लावारसी फेरत है जो गाँव वाँव के अपने। हाँ, खुद की तो अपन बांध रहे हैं,
0: बांध के उनको भोजन कराओ चाहिए, माने उनको चराव चाहिए, है ना।
1: हाँ हाँ,
0: अबे खोलो छोड़ दे तो ज्यादा हरियाई खा जाते
1: भी। हाँ, नुकसान भी कर जाते उनको।
0: एक बात तो जा हो गई भैया, दूसरो बोनी काय की कर दी, जमनाम ना हो गो।
1: हाँ, सोयाबीन भाव साहू जी, अपन ने सोयाबीन और मक्का लगाई है।
0: सोयाबीन मक्का और कछु और दा राहर
1: और रूप में घर को खा सको हो जाए। चार मार को बारह मारा बना दे खो, ऐसे ज्यादा में नहीं करे
0: यहाँ। भैया बरों को नाम ले दो आपने, है ना।
1: कछु जगह छोड़े तो साग भाजी लगा ले हैं अपने घर को हो जाए।
0: अच्छा गुड्डू भैया, एक चीज और बताओ, बरा पे से ध्यान आई
1: के
0: एक तो होते हैं बरा, एक अपन कुचिया भी केत।
1: हाँ, कुचिया ही क्या थे गाँव में, ज्यादा कुचिया।
0: और कहूँ कहूँ भैया दरिया का हाथ है, दरिया और में का फर्क रहे बरा में, कछु बते हो?
1: अब दरिया और कुछ ज्ञात हो जाइए का यार, दार के बना थे छकड़ा लगी सो होगा दरिया।
0: हाँ,
1: और दार साफ करके धूली दार के होगा सुबह होगा बरा।
0: अच्छा अच्छा, चलो भैया ठीक है,
1: हमारे हिसाब से।
0: हाँ, और हमने आकार को भी फर्क देखो भैया, जहाँ जहाँ दरिया खाए वे बहुत बड़े रहे थे।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: छोटी
1: स्वाद ही लग रहा था वो गाँव की, वो कुछ गया को
0: बिल्कुल
1: भूलीदार को नहीं, तो स्वाद आ गया। हाँ, वो बना था बड़ा दही बड़ा, तो वो
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छी देसी बीज की उर्दा हुए भैया, तो आनंद आ जात।
1: अरे माई में डाल के खा दो, मैं आ जाता तो भाई को माई मठानी को
0: ताजो मठा। चलो गुड्डू भैया, कितने दिन की हो गई आपकी सोयाबीन की फसल?
1: अब कछु होगा 10 दिन को, कछु 8-8 दिन को, जैसी थोड़ी थोड़ी पानी आने गया तो ऐसी बोनी करी है।
0: जैसो जैसो बतर में लतका हुई है उसी बोनी करी हुई है आपने?
1: हो हो, तो कछु कछु गांव की खराब हो गए हैं, कछु गहूंगो नहीं।
0: हाँ, तो भैया जो अंतर जितने दिन को अंतर रहे थे, जो अखीर तक चलत हुई है ना, देख रेख में भी दवाइयों में भी।
1: हाँ, साहू जी जा के ऐसे इन दिनों की हराज जेठी कहाउ थे, एक टाइम को भी जेठ हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जुड़वा बच्चा हो था भैया, तो एक मिनट को भी फर्क है, तो वो जेठो और लोहेरो कहाउ।
1: हाँ, तो यहाँ तो हराज जा कहाउ थे आसार की बानी में, हराज जा जेठी हो जाते पहले बकार के भाव जाते, तो हराज जा डर के मनाती, तो वह हराज जा जो पहले भैया थी, तो वह हराज जा जेठी हो जाती।
0: चलो भैया, आज बहुत अच्छी आपसे जानकारी मिली हमें, और अब आओ थे अपन आज के अटका पे।
1: और पूछो साहू जी, बने तो बता है।
0: बिल्कुल भैया, के लगत एक रूख झलरा, ओ के तरह बेलरा, और ओ के तरह सुरकू, और ओ के तरह हप्पू। हंस रहा भैया?
1: नाक तो नहीं।
0: चलो और सोचो तो नक।
1: जीव आए
0: फिर से सुनो, आपने सही दो है एक जवाब। एक रूख झलरा, ओ के तरह बेलरा, ओ के तरह सुरकू, और ओ के तरह हप्पू।
1: तो नाक यार जी भाई।
0: चलो चलो, बहुत हद तक आपने बता दो है, सुनत चलो आपको और अच्छे से मालूम चल है। अच्छा। और आप जो हंसे ना, आपकी जो खुशी है, अब अबे अपने जयशेखर भैया एक श्रोता से बात कर रहे थे कि जब खुशी महत्वपूर्ण रहे थे, है ना।
1: नहीं, हाल फूल सी हो जाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अटका की एक जानकारी हो थे, जितनी महत्वपूर्ण बात है उतनी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जा बात है कि हमारे श्रोता भैया बिन नहरे खुश हो जाते हैं ना।
1: अरे साहू जी, हमारे तो सियाने सियाने सुना थे, एक गंजवारी बाबा है 80 साल के।
0: हाँ जी,
1: वे बाजो रखे हैं, अबे अभी वो उनसे रेड को ही रखे हैं वे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और सेलदार वो आउट है, सेल ही तो बढ़िया से मिला था सागर जाओ जाओ।
0: चलो भैया,
1: पूरा कार्यक्रम सुना थे जो हम आप फोन करे में आए, तो कहें गुड्डू महाराज तुम आप फोन आओ, तो कहीं का हमने सुनो तो। हाँ, किसान माड़ी में भी समस्या भी कछ उनकी हो तो हमसे पूछवा ली थे।
0: हाँ, हाँ, एक दो बार आपने उनके नाम से पूछी है, बिल्कुल सही बात। हाँ, है भैया, जो आकाशवाणी को सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग बार और नियमित श्रोता हमारों के संग जुड़े हैं। और अब गुड्डू भैया, आज की फरमाइश बता दो आप।
1: राम गोपाल नायक को लोग सुनवा दो।
0: राम गोपाल नायक को कौन सो?
1: बोसनुआ जो काय हमसे करिया कहती मैया हमें सखियां सताते।
0: चलो ठीक है भैया, तो आपकी फरमाइश गुड्डू भाई पूरी करी जा रही है, आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पे राम गोपाल नायक को गाओ जो कृष्ण भजन।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, फोन करें लोग की सुने में खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं आपको।
0: ग्राम बमाना सर, राकेश
1: राजा। राकेश भैया, बरसा रानी का क्या रही है?
0: बरसा ही रही सर।
1: बरस रही है
0: जी सर।
1: तो भैया ठीक ठाक चल रहा हो काम धाम के? नहीं,
0: बढ़िया सर, ठीक ठाक चल रहा, बरसा अच्छी हो ही रही एकदम से।
1: हाँ भैया, देखो सब ऋतुओं को अपन को लाभ लेना चाहिए, और अपन अगर अपनी प्रकृति को बचा के रखें, पर्यावरण को बचा के रखें, तो जो पहले है तो कुछ समय पहले के भैया 4 महीना जड़कारे के, 4 महीना बसकारे के और 4 महीना गर्मी के, तो ये 4 महीना कितने अच्छे लगते। अब तो भैया ऐसा होगा कि 4 महीना गर्मी के और वो के आगे 4 महीना भी गर्मी के और ओके आगे भी 3 महीना गर्मी के, 1-2 महीना ठंड को।
0: अब तो पता ही नहीं पड़ रहा सर, गर्मियाँ चल लेके ठंडा चल ले।
1: हाँ भैया, तो अपन की एक ही जिम्मेदारी बन रही है कि अपन पेड़ बचाएं भैया, और पेड़ लगाएं बरसात के मौसम आ गए। हाँ हाँ, और भैया संगे संगे एक और जरूरी बात रही थे, तब भी पर्यावरण

0: पूछ रहे हैं कि आप हमें अटका को जवाब दे दो।
1: जी सर
0: क्या
1: बताएंगे
0: कि आप
1: सर।
0: हंसो भैया, हम हंसे तो पर्यावरण भी हंसे।
1: ये सर बनेगा तो बहुत बताएंगे।
0: बिल्कुल भैया, अटका कह रहा है कि एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
1: संकेत सर कछु
0: बगैर गैसिंग के भी तो आप पेपर हल करके बताओ थोड़ो।
1: सर एक बार फिर से बोल दीजिए।
0: हाँ, एक रुख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
1: सर बारिश नहीं है।
0: चलो भैया कोई बात नहीं, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे रहे हैं।
1: राजू पटेल सुनवा दीजिए सर।
0: राजू पटेल को कौन सा भैया
1: कौन से सुनवा दीजिए सर।
0: ठीक है भैया, हम आपको सुनवाऊ थे राजू पटेल और उनके संगीत साथियों को गाओ भाओ जो लोकगीत।
2: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी। अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत

0: हेलो
1: हेलो भैया, जयराम जी लग गए।
0: जयराम जी भैया कहाँ पहुँच गए आप, कह रहे पहुँच गए है?
1: अरे जो संगमार से बात चल रही थी।
0: चलो ठीक है भैया,
1: लगा रहे थे सर।
0: अच्छा सो फोन पहुँच गए जा के रहे थे।
1: हाँ उस जाए के भी हम अंदर पहुँच गए है।
0: जा बहुत अच्छी कह रहे थे, काय से कछु हाँ। जगह के फोन ऐसे आते हैं भैया को तो खूब हल्ला गुल्ला होते रहते।
1: हाँ तो हमने इशारो कर रहा हूँ तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा करो,
1: हल्ला कर हम लग गए है अपने।
0: चलो बहुत अच्छा काम करो आपने, और बता दो अपनो नाम और कहाँ से बोल रहे।
1: हाँ हम बोल रहे साहब नरवानी से, राजू राय बोल रहे।
0: राजू राय?
1: हाँ नरवानी से,
0: जो नरवानी मकरोनिया के पास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मकरोनिया के 2-3 किलोमीटर फोन लाने से बिल्कुल लगी हुई है अपनी बस्ती।
0: अच्छा, और नरवानी कितना बड़ो गांव है राजू भैया?
1: बड़ो गांव है सब, कम से कम 1,000-1,200 वोटर है।
0: 1,000-1,200 वोटर है तो 2,500-3,000 की आबादी हुई है ना?
1: हाँ हाँ।
0: चलो भैया, और काका सुविधाएं हैं आपके गांव में? वैसे तो जो शहर से बिल्कुल लग गांव है मनो, फिर भी हाँ। आपके गांव में पंचायत में जो है काका सुविधाएं हैं?
1: अपने तो सभी सुविधा है बिल्कुल।
0: अस्पताल है भैया के?
1: अस्पताल नहीं है,
0: बड़तुमा हाथ हो। चलो ठीक है भैया, और का करत हो आप उते नरवानी में?
1: हम दुकान कर रहे हैं।
0: काय की दुकान? किराने की। भैया आप किराने की दुकान करे हो तो सामान लेबे कहाँ जात हो आप?
1: उतई सेलिंग वाली आल थे सुबह ते तई दे जात
0: सब। अच्छा उतई उपलब्ध हो जात।
1: हाँ
0: कछु सामान मकरोनिया आके ले जात हुई हो, और अगर
1: कछु मकरोनिया ले जाते
0: और अच्छे दाम से चाहे तो सागर भी आ जात हुई हो?
1: हाँ सागर चले जात होते।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, और खेती बाड़ी?
1: खेती बाड़ी है सर अपनी 2 एकड़ है सुते नहीं है धामोनी क्षेत्र में तो बहरवाल के।
0: इतो बड़ो फर्क काय होगा भैया, खेती आपकी धामोनी में है और रेत आप नरवानी में हो?
1: का है इतने की बेच के उते ले ली थी।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ। उते की को देखत भैया खेती बाड़ी?
1: उते तो यहाँ भगाई मराई थे अभी ठीक है।
0: चलो भैया ठीक है, हालांकि एक बात कही जात है कि खेती आप सेती
1: हाँ।
0: है ना, अगर अपने हाथ से करो भैया खेती तो उमे तनक वो फायदा दिखाते
1: पाते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भैया तो फिर आपकी मजबूरी कहा कि आप करवात हो है ना?
1: हाँ हाँ।
0: चलो राजू भैया तो पाँव को अपने इलाज विलाज भी करवाओ।
1: हाँ।
0: और भैया अब आते हैं अपन आज के अटका पे।
1: हाँ।
0: तो आज अटका लेके आए हैं कि एक रूख झलरा ओ के तरह हाँ। बिलरा और ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: जो तो सर नहीं बन रहा
0: है। नहीं बन रहा भैया?
1: फिर सकत
0: जी। हाँ बिल्कुल भैया, फिर से कहें दे रहा के एक रूख झलरा ओ के तरह बिलरा और ओ के तरह सुरकू और फिर ओ के तरह हप्पू।
1: डिब्बी तो नहीं चला, डिब्बी जलाती
0: नहीं, डिब्बी नहीं भैया।
1: संकेत बताओ
0: ना। संकेत अपने शरीर से जुड़ी भाई चीजें हैं भैया।
1: आँख जो तो सर
0: बगल में खड़े खड़े जो आँख कान मुंह को कह रहे भैया
1: बताया।
0: हाँ तो चलो ठीक है भैया, अभी बहुत सही कह रहे हैं, अब सुना चलो आप, बाद में आपको और बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से उत्तर पता पड़े।
1: हाँ हाँ।
0: और अब बता दो राजू भाई अपनी फरमाइश।
1: हमें बात सुनना है, कायरा था तो मैंने गजब कर गई।
0: उनकी फरमाइश तो आ गई भैया।
1: आ गई?
0: हाँ।
1: तो एक काम करो तो।
0: बताओ करें ले।
1: अच्छी कोनू ब्याह की गाड़ी।
0: हाँ ब्याह गाड़ी, कोनू कलाकार को नाम बते हो भैया?
1: मालती विश्वकर्मा की गाय सुना दियो गाड़ी।
0: चलो ठीक है भैया, लो आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं मालती विश्वकर्मा और इनकी सखियों की गाय जब आओ गाड़ी।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते भैया, फोन करे लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
1: हमारा नाम तेज सिंह लोधी, सेमरा रामचंद्र।
0: सेमरा रामचंद्र। भैया जो सेमरा कहाँ पे है आपको?
1: बंडा से 8 किलोमीटर बराठा रोड पे है।
0: अच्छा भैया, तो हमें लगा था घूमे फिर भी तो आप दिन भर बंडई में आजाद हुई हो।
1: बंडई में आजाद है मित्रैया जी लक्ष्मण।
0: हाँ तो ते चाय भी पियत रहे थो।
1: चाय तो बस है।
0: देखो ये अब आगे हो चाय को मौसम, बरसात है, जैसे जैसे गर्मी कम हो रही है और कई शौकीन भैया हम जैसे तो भैया गर्मी में चाय ज्यादा पियते और चाय को तो जैसा है कि चाय जब पी लो। तो भैया करत का हो तेज सिंह भैया आप?
1: सर खेती किसानी करते हैं।
0: और बरसात के हाल चाल कहाँ है भैया, संतुष्ट हो कि नहीं अभी तक?
1: बरसात की ठीक हो रही सर, अच्छी हो रही जो जैसे पना चाहिए है।
0: हाँ हाँ हाँ, यानी मूसलाधार तो नहीं हो पा रही है, रिमझिम रिमझिम हो रही है?
1: अच्छी रिमझिम बारिश हो रही।
0: हाँ हाँ,
1: मौसम भी ठीक हुआ है।
0: हाँ थोड़ी सी बस जा है भैया कि उमस खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्या है गर्मी तो अपन झेल लेते हैं, उमस में का पूरे कपड़ा पसीना में भीग जात भैया। तो कछु अपने विचार बताओ भैया हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में।
1: हम तो सर सुना थे आपके, पहले से सुन रहा है।
0: हाँ हाँ, कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हो भैया?
1: हमें तो जो हम सुना था लोकगीत है जो ऐसे।
0: हाँ हाँ हाँ, और भैया हम आपसे निवेदन करें कि अगर आप किसान वाणी सुनो, खेती गृहस्थी से जुड़ो हुआ कार्यक्रम, वो में आपको लोकगीत भी मिले हैं, मनोरंजन के जितने स्तंभ हैं वो आपको सब मिले हैं, और संगे सूचना ज्ञान जी मुफ्त में मिले भैया वो में अलग से।
1: तो अपन उसे जुड़ दे भी, खेती किसान से जुड़ दे आकाशवाणी।
0: बिल्कुल भैया, और आप गुरुवार को भी फोन लगा सकते हो और अपनी जो भी समस्या है पशुपालन से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी, आप फोन करो, हमारे के बैठे थे विशेषज्ञ भैया, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ लो आपको जवाब मिल जाए। तो हम भैया अब आपसे पूछ रहे हैं अटका।
1: पूछ ले
0: अटका, कह रहे हो कि एक रूख झलरा ऊ के तरह बिलरा ऊ के

0: तो भैया हरो रामचरण यादव और उनके संगी साथियों के गाए ए लोकगीत के संगे अब आज को फोन करे लोकगीत सुने तई पूरो हो रहो है
1: किंतु
0: आज हम मनो की अपेक्षा कर रहे थे सो आज किंतु आ गो।
1: हाँ तो ये किंतु परंतु अपन ने अटका आज को जो लव बहुत ही मजेदार हदो और सच्ची कहें तो जब अपन एक हो सिलेक्ट कर रहे थे तो हंसी रुक नहीं रही थी
0: और अपन ही ने कह रही थी कि आज शायद कोई ना बता।
1: हाँ और वैसे ही भाव भैया तो जो 900 अटका हमें लिख के भेजो तो श्रीमती चंपा देवी साहू ने बरिया टिकड्डा पथरिया जिला दमोह से।
0: चलो तो अपन इनसे केवो चाहत है कि जे अगर ऐसे और भी पारंपरिक इनके पास अटका हुए तो भविष्य में भेजत रहे।
1: हाँ।
0: और अपन शामिल करत रहे।
1: मनो अटका को जवाब तो दे दू।
0: हाँ अटका को जवाब सब जनों ने भैया जवाब जो ने दो आदो अधूरो दो।
1: हाँ हाँ।
0: एक रूख झलरा माने जो होते सिर मूल।
1: हाँ हाँ।
0: जहाँ भैया पेड़ के समान अगर तो वो झालरें लटकी
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: ओके तरह बिलरा माने आंखे।
1: हाँ।
0: और फिर ओ के तरह सुरकू माने नाक।
1: क्या बात है
0: सुरकत रहे तब पर।
1: हाँ।
0: और ओ के तरह हप्पू हप्प हप्प खावे बारो अपनो मुंह।
1: बहुत ही मजेदार भैया।
0: तो एक रूख झल रहा ओ के तरह बिल रहा ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: हाँ।
0: तो भैया बड़ो मजेदार आज को जो अटका है तो और सब जनों ने देवे के प्रयास करे।

0: तरह को, और उत्तर भले न दे पाए लेकिन प्रयास भी करते हैं तो अच्छो लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही भैया।
0: और अब भैया हरो चलत चलत आप और बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो तो अरुण कुमार जायसवाल ने, कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू
1: और हम भैया जयशेखर।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जयशेखर की और संयोजन दीपक निषाद को। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों में आप औरों से फिर भेंट हुई है यही उम्मीद के संगे। फिलहाल हम दो जनों को देव अनुमति।
1: राम राम, राम।

फोन करें, लोकगीत सुने। ये फोन इन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पर बातचीत कर रहे थे जयशेखर और सतीश साहू। प्रस्तुति जयशेखर की थी और संयोजन दीपक निषाद का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा।
2: जी, वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोज पत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओं, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
0: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
6: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
5: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
5: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है।
6: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
5: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
6: जी,
5: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
4: अच्छा,
5: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
4: बहुत सुंदर उदाहरण हुई है। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
6: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
5: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
4: बिल्कुल,
5: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
6: जी,
5: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
4: बिल्कुल,
5: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
6: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
4: जी,
6: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
4: जी,
6: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
4: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
5: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
4: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
6: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
5: बिल्कुल,
6: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
6: जी,
5: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
4: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
5: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
6: जी
4: बिल्कुल,
6: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
4: जी,
6: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
6: जी,
5: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
4: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
6: जी,
4: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
2: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश, है गोपाल, इसको बोलो। हाँ, इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ, शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं। हम जानते हैं
2: पानी का

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ा।
2: जी गुरु जी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरु जी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पार्ट पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे

0: के पानी के कौन-कौन से साधन हैं, ठीक?
1: जी।
0: अच्छा तो बच्चों बताओ पानी कहां-कहां से मिलता है?
2: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
0: अच्छा
3: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
4: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
0: हां हां, ये भी ठीक है।
5: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
0: शाबाश भाई। बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
3: मास्टर जी,
0: हां हां बोलो।
3: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
0: हां हां क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन-किन कामों में करते हैं, ठीक?
1: जी मास्टर जी।
0: लिखो फिर, सब लिखो।
6: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
7: दीदी बोलो मालती।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
7: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हां दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
7: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
7: हां फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
7: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
7: हां।
6: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
9: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते बच्चों। नमस्ते
10: दीदी। ये,
7: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहां से लाए तुम ये फूल?
5: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
7: अच्छा
5: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
7: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या-क्या नाम हैं बताओ तो जरा।
10: गुलाब।
7: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन-कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहां?
9: दीदी मैं बताऊंगी।
7: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हां प्रवीण बताओ।
10: गुलाब। गेंदा।
7: हां
10: चमेली। और
7: हां
10: चमेली।
7: चमेली।
10: सूरजमुखी।
7: सूरजमुखी, शाबाश।
6: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हां इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
7: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूं।
6: जी।
7: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
6: जी जी।
7: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
6: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
7: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
6: बहुत अच्छे।
7: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
6: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
7: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
6: जी।
7: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
6: हल्के नीले रंग के?
7: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
6: अच्छा।
7: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
6: काहे की लिस्ट?
7: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
6: ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
6: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
7: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
6: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग
3: उमंग उमंग एनसीईआरटी द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
4: हरिराम आचार्य की रचना थी, विश्व मोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज में फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे। बशर नवाज की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी। ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

सरजर आवाज थी भूपेन हजारिका की गुलजार की रचना। आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली से। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आनंद बख्शी की रचना, लता मंगेशकर, इला अरुण की आवाजें, फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज़।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरी की। फिल्म मोहरा, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत विजू शाह का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: बप्पी लाहिड़ी की तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल सुरों में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ।

0: ली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

लता मंगेशकर की आवाज में वर्मा मलिक का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म महान। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, अनजान की रचना, आर डी बर्मन की तर्ज।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।

सभी जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं यानी नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, गीतों की पुरवाई बनकर विविध भारती आपके घर आंगन तक पहुंचती है, तो शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का नायाब कार्यक्रम सुरीला सफर। चलिए चलते हैं साथ साथ इस सफर पर, देखते हैं कौन कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने तो पढ़ा ही है क्या इबारत हमने आज लिखी है, लेकिन रेडियो श्रोताओं के लिए भी हम पढ़ देते हैं आज की इबारत। धनक टूटी चंद्रमा की सीनी में बिखरने लगी, सीढ़ी देखी मैं चढ़ी तो हुस्न परी उतरने लगी, घटती गई उम्र बढ़ते हुए कदम के साथ, फिर लड़खड़ाया जो इस सीढ़ी पर बचपन, बढ़कर थाम लिया परी ने मेरा हाथ, नैन बदरा दिल भंवरा हुआ पास बिठाई कहने लगी, अपने ही घर में मेहमान की तरह आई, क्या बेघर हो गई कमाते कमाते, मेरे खामोशी सुन चुराते फूल कांटों की लड़ी चली, सब बेरंग फिर रंग हुआ कुछ यूं जादू की छड़ी चली, वक्त पीछे हुआ हम आगे जब चुराए आम ठाकुर के ताक में छुपा दिए, सीढ़ियों पर कभी बातें तो कभी पंच गट्टे का खेल, इन पर चढ़ती उतरती चंदन सी धूप को देखा, बारजे दरीचे यहीं झटकते जुल्फों से बूंद के मोती बरसे, और कभी छत पर चांद का झूमर देखा, मकान चढ़ के जिसपे हवेली हुआ, छुपी खेली भागी गिरी बिन साजन झूला झूल गई, कुछ यूं चढ़ी सीढ़ी मैं आज के उतरना ही भूल गई। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें अपने पसंदीदा जो शब्द इस इबारत में हैं उनके गीत लिखे हैं। तो आपको ये भी बताना है कि सीढ़ी से कौन कौन से गीत आपको याद आ रहे हैं, यानी जिन गीतों में सीढ़ियाँ भी दर्शाई गई हैं। वैसे सीढ़ियाँ जो हमें मंजिल तक पहुँचाती हैं, जिन पर उतरते चढ़ते खेलते, कभी तालाब के किनारे भी आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ बनी होती हैं, नदियों के किनारे सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ बैठ कर कभी बातें करते तो कभी कॉलेज की सीढ़ियों में पढ़ते, समय बीत जाता है, यादें धुंधली पड़ जाती हैं, घरों की जिन पे वक्त बिताया सीढ़ियों पर वो भी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। तो उन घरों उन छतों उन सीढ़ियों को अक्सर जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, आज सुरीला सफर कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं ऐसी ही बातों को और सीढ़ियों की यादों को। तो आप भी अपनी यादें हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं उन श्रोताओं का

खूबसूरत अभिनेत्री साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूं के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आपको फिल्म बतानी है श्रोताओं, और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर देखकर हमें बचपन के दिन याद आ गए हैं। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि दिल का भंवर करे पुकार, दम भर जो उधर मुंह फेरे। और एक शेर सुनाता हूँ, और बहुत सारे गीत इन्होंने अपने पसंद के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र है। बाल्यकाल से यौवन तक का सफर और ढलती उम्र को उपमा के साथ दर्शाया गया है। स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम्य चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है। वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है। जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो अनगिनत निशान बाकी हैं जो कभी दौड़ भाग कर छुपने छुपाने की गवाही देते हैं। वक्त की धूप और छांव इन पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार डंडों पर चढ़ती हूँ तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। चौखट से झांकती वो माँ की ममता और आंगन में गूंजती वो बचपन की किलकारियां आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। इन सीढ़ियों की हर एक दरार में जैसे मेरा बीता हुआ कल महफूज है जहाँ उतरने का तो कभी ख्याल ही नहीं आया। और बस इन्हीं यादों के सहारे ऊपर आसमान छूने को चाहत रही। आप ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है। मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गांव में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते। बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि आपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे, ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयान कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल भर पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी के तरह था जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त सोच रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदी अली खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहाँ पत्थर से बनी काफी चौड़ी सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठकर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितनी यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नज़ारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोताओ, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला, वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है, और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक कहें या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काट कर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, इन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी, बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे, या तो फिर आपको ये भी ज़रूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठ कर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था, तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थी, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी, घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियां चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफे है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियाँ कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओ, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्जाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया और सीढ़ी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर, मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें जरूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठ कर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थी, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं, इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा

है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतरकर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

तो कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहाँ खूब सारी सीढ़ियाँ होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मजा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसीन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती है कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचानें?

चेन्नई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा यह गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। फिल्म थी आ गले लग जा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म आरोप का गीत सुनिए। माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत बनाई है भूपेन हजारिका ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आरोप के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचकर 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे, जहां वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं। वे यहां भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। डॉक्टर यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण भी करेंगे। यहां राज्य की औद्योगिक नीतियों और धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित किया गया है। कटनी जिले की सलीमनाबाद वाटर टनल की खुदाई पूरी हो गई है। यह करीब 12 किलोमीटर लंबी टनल देश की सबसे लंबी वाटर टनल मानी जा रही है। इसके जरिए नर्मदा का पानी बिना पंप के सोन बेसिन तक पहुंचेगा। इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों की करीब 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा और कटनी शहर की पेयजल की जरूरत भी पूरी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से अशोकनगर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोपहर बाद वे आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। शाम 5:45 पर वे सेमरखेड़ी पहुंचकर विद्युत सबस्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद करीब 9 बजे तक वे अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रेल मंत्रालय ने IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन

जारी किया है। इसका मकसद टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। नए वर्जन में कैप्चा और पॉपअप हटा दिए गए हैं। अब यात्री सभी श्रेणियों में सीट की उपलब्धता देख सकेंगे। टिकट बुक करने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स भी कम कर दिए गए हैं। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी भी सेव रखेगी। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश की कई शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 2753 करोड़ रुपए है, जिसमें इंदौर की जल प्रदाय योजना, जबलपुर की सीवरेज परियोजना और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इसके अलावा उज्जैन में 11 मंदिर परिसरों के विकास और कॉरिडोर निर्माण की बड़ी परियोजना को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ये कार्यशाला भोपाल के MPCST विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसका मुख्य विषय पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में बाल कल्याण समितियों की भूमिका है। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त और पीड़ित बच्चों की कानूनी सहायता और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले सप्ताह से भारी बारिश न होने से कई जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 11% कम बारिश हुई है। आज इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से नया मौसमी सिस्टम सक्रिय होने पर तेज बारिश फिर शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के वैश्विक साहित्यिक मंच आईना के साथ आयाम जीवन के विषय पर आयोजित साहित्यिक अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। शिवपुरी में कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तहत अब छात्र 31 जुलाई तक दाखिला ले सकेंगे। पन्ना में आज से 15 दिवसीय भव्य श्रीमद्भागवत महापुराण का शुभारंभ हो गया है और नीमच के ग्राम पालसोड़ा में आज जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को निराकृत करने के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। इस समय दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में PV सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के

0: प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
0: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगशुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जाँच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
4: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
5: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनकी आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें

0: के बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

देख चंद्रमा आता है, रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती नहीं।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार।

सचिन देवबर्मन की तर्ज थी मजरू सुल्तान पर एक लिखा गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म काला पानी से।

0: ओपन ईयर की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

हमको तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे उल्फत में दो दिलों को बहका

0: गंगा की लहरें सुनकर दोगाना अपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सहारा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज है श्रोताओ। यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जो उन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है,
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही भाई, रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या

0: लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
1: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
0: हाँ, वो तो कहा ना,
1: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके, सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही।
0: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति हैं ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
1: बिल्कुल,
0: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है, तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
0: मतलब ये ऐसे उपचार है कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर।
1: प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान ले तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे हो जाएगा।
0: आरती, आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं।
1: महंगी आती है वो, जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्राकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कुछ अलग ही
0: शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
1: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
0: जी।
1: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
0: दिमागी कसरत
1: भूल गई। थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइंस बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या, कौन सी चीज छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज।
0: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों की दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों का।
1: वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए, कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट्स भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय हैं उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल,
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काट लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: वैसे अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार
0: करके और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है,
1: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते थे।
0: बिल्कुल, इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं, डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया।
1: बिल्कुल, और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ,
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ,
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है, अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत है ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना है कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है,
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए
0: जी। और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उसे अलग ना होने दीजिए।

0: नई चीजों को जो भी आधुनिकता है उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है, और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में। तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ।
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे।
1: हाँ।
0: तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए। हाँ। कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। मनोरंजन देना है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है।
0: हाँ।
1: इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
0: बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे, और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
1: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी।
0: बिल्कुल। तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल बदलाव
0: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में फोन में बिजी दिखाई देता है।
1: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
0: अरे वाह,
1: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ, उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए।
0: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
1: जी,
0: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
1: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिखकर
0: पहुंचा, उससे हमें आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
0: जो आपके अनुभव है ना वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे
1: जी।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले कठपुतली के शो नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
1: बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
1: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे। इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे

0: खेल हैं उनपे भी आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई आप, वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं। अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
1: जिनमें कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
3: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम
2: पहले अभी हम गीत सुनेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
0: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
1: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
0: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
1: और पिछले कई दशकों से यानुंग जामोह लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे, जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं, बहुत सारी चीजें शामिल हैं।
0: और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्घ होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
0: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, और बात है दिमागी पहेली की।
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी,
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता है वो भी लिखते हैं कि शारीरिक जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत जरूरी होती हैं। वैसे हर रोज सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसी हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल, और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है। हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए, एक गीत सुने।

0: बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है
1: क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी हो कि तुम बड़ी चटोरी हो, और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देखते कि तली भुनी चीजें बन रही है, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन
1: रही है, मन नहीं मानता है फिर तो तुमसे।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपने नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का, कभी एक टाइम खाना खाती हूँ वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल, तो आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब देगी तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
0: और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज होती है ना गड्ढे जहां पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं, तो वहां पानी का भराव ना होने दें। और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आए उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जलभराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है, तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं। ताजा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिए, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही है चीजें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें, मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाए तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें, बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण से बचने के लिए जो बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, तो खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
0: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि

0: बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है, कितनी अच्छी बात लिखी है। लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए, बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है, उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जुड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका निमिष होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़ है।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी मैम। आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आप अपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपनी खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना एमपी में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं, अभी थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रतनामा, सखी सहेली और आपके जो मन चाहे गीत, ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजे में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: देखिए, खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को। देखिए, आकाशवाणी एक ऐसे माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। वही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो है मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलोचक विविध भारती से बात करते हैं। हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा भी प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको

0: इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: तेरा दामन, तेरा दामन,
1: दामन दामन,
0: तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन,
1: चिलमन, चिलमन,
0: मैं हर चिलमन।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुकवाना

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेपवार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसे हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, भैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेल जोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाए?
1: दिल प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, हरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक आउट

0: पैगंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है।
1: जी बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ मैं।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक ड्यूटी में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना।
1: जी जी।
0: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम, मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एप्पल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वो ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइन एप्पल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एप्पल का, है ना। एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते वाला जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल जाए।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का मैम, आशा की चंद लक्ष्मियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: आशा की चंद लक्ष्मियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया। मजाक नहीं जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार, गांव हीरा वाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: सर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान धून है, लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना सुबह शाम दोपहर, क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं, 4-5 दिन तक, उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन में कम पड़ गया, चल कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहेगा। 4-5 महीना पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: दुनिया के हालात पर अपना एक

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुपोता संघ बस स्टैंड बंदा को चाय वाले को चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेले जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकान हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी अब खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की

0: खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं, और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के ग्लास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डस्टबिन भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए, फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी, पहले तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहते हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत। और जो 3 बजे चतुर्थी कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है, तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, उसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छे है मंदिर घूमने के लिए, बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो खेती में बहुत अच्छी बांस का जो
0: काफी अच्छे सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊँ 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊँ आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में मटर में लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप पे आने से हमें आपको बताऊँ स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली हवा महल सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो सुनते हैं, और पिटारा के तहत तो हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आते था ना से जी, उसने काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म मकान में प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कर रही हूँ
1: मंदाजनी दीदी, नमस्ते। मैं दूसरी बार बात हो रही है आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील छोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ, अच्छे हो? कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप विजय जी? बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा, तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष? कोई
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई है?
1: हाँ, हाँ, हाँ, वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी उनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: मैं वीर भट्ट के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी। सभी सखी सहेली हेलो कह लिए, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगर में अभी जो शुरू हो गए ना, वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी।
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ, सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है। मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है, वो भी सुनता हूँ।
0: उसके
1: बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी।
0: वो सभी कार्यक्रम
1: मैं AM पर सुनता हूँ, विविध भारती का कार्यक्रम जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: दो रेडियो मेरे पास आए, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफो मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रही हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मत राव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश में हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं, जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है साइड पर, सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दो तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों में से।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज में
1: और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आई गई फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: छोड़ के रख दूं, खुशी से कोई जीता है खुशी से उसको जीने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8760-02-88-0222-400-2462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं। डॉ. यादव आज भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। शहर में आध्यात्मिक उत्साह झलक रहा है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। और तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। वे इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

गुड इवनिंग सागर प्रेमियों, ना उम्मीदी में भी उम्मीद ढूंढ रहे मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आपके हाल चाल? पहले जैसे भी हो पर अब डेफिनेटली अच्छे हो गए होंगे, है ना। स्टूडियो की टाइम मशीन पर वक्त हुआ जाता है 5:03। साल के 365 दिनों में खत्म होता हुआ दिन शुमार 197। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युववाणी उपासना की आवाज में। दोस्तों, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना, कभी सुबह की पहली किरण जैसी, कभी दोस्तों की बेवजह हंसी जैसी, तो कभी माँ के उस संदेश जैसी जिसमें सिर्फ दो शब्द लिखे जाते हैं, खाना खा लेना बेटा। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जो धीरे धीरे इन छोटी छोटी खुशियों का एहसास ही छीन ले तो। यही सवाल लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। आज का विषय है, नशे से दूरी है जरूरी क्योंकि जीना है जरूरी। हम आपको डराने नहीं आए हैं, ना ही कोई भाषण देने आए हैं। आज बस थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे, आपके सपनों की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी की। क्योंकि कभी कभी एक फैसला सिर्फ एक पल में लिया जाता है लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी चलता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे थे तो सबसे बड़ा नशा क्या था? बारिश में भीगना या गली में क्रिकेट खेलना, रविवार की सुबह देर तक सोना या रिजल्ट वाले दिन माँ की

मुस्कान देखना, फिर बड़े होते होते कुछ लोग असली खुशियों की जगह झूठी राहत तलाशने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी राह जिसका अंत अक्सर मंजिल पर नहीं पछतावे पर होता है। लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो हर कहानी फिर से खूबसूरत बन सकती है। और इसी उम्मीद के साथ सुनते हैं आज

दोस्तों, एक और छोटा सा सवाल है मेरा। एक बात बताइए, अगर आज आपको कोई पूछे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, या फिर मुश्किल समय में भी सही फैसला लेने की हिम्मत? क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम सफल होना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है गलत रास्ते को पहचान कर उसे ना कहना। और सच मानिए, जो इंसान अपने फैसलों का मालिक बन जाता है, उसे दुनिया की कोई लत कभी अपना गुलाम नहीं बना सकती। कहते हैं सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उन्हें टूटने में सिर्फ एक गलत आदत ही काफी होती है। तो अपने कदम जरा संभाल कर रखिए। आइए सुनते हैं हमारा अगला गाना, फिल्म चक दे इंडिया से बादल पे पांव है।

अभी भी बादलों पर हैं, है ना दोस्तों? तो जरा अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और सोचिए, आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है बस एक बार और दूसरे पर लिखा है बस एक बार मना कर दो। अजीब बात है ना, जिंदगी में कई बड़े फैसले यही दो वाक्यों के बीच छिपे होते हैं। बस एक बार और, ये वही चार शब्द हैं जो कई बार एक जिज्ञासा बनकर आते हैं और फिर धीरे धीरे आदत का रूप ले लेते हैं। लेकिन उतने ही ताकतवर चार और शब्द भी हैं। नहीं, ये मेरे लिए नहीं, यकीन मानिए ये चार शब्द किसी भी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। राघव नाम का एक लड़का, उम्र सिर्फ 19 साल, क्रिकेट का शानदार खिलाड़ी, कॉलेज की टीम का स्टार। हर किसी को लगता था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, खूब नाम कमाएगा। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, यार बस एक बार ट्राई करना। राघव ने सोचा एक बार से क्या होगा, लेकिन कुछ महीने बाद मैदान वही था, बैट भी वही था, सपना भी वही था, बस उसे पूरा करने वाला राघव वो नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से कहा, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। उसने मदद मांगी, परिवार ने साथ दिया, दोस्तों ने हौसला दिया और धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी वापस जीत ली। दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है जानते हैं? राघव गिरा ज़रूर, लेकिन वहीं नहीं रुका, क्योंकि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए और हर इंसान उस दूसरे मौके का हकदार भी है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसी गलती में हमेशा के लिए खो जाना ये हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो खामोश रहने लगा है, जो पहले जैसा नहीं रहा, तो उससे सिर्फ इतना मत पूछिए कि क्या हुआ। कभी ये भी तो पूछिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हो सकता है आपका यही एक सवाल उसके लिए उम्मीद का किरण बन जाए। और अब एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हर दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। आज़ादियाँ, फिल्म उड़ान से है।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें दो तरह की यात्राओं पर ले जाती है। एक यात्रा जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है और दूसरी जो हमें अपने ही आप से दूर कर देती है। चुनाव हमारे हाथ में ही होता है। बहरहाल, आज 16 जुलाई का दिन हमें एक और खूबसूरत संदेश भी देता है। देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा आस्था, एकता और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा का प्रतीक मानी जाती है। रथ तभी आगे बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है, और ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी आगे बढ़ती है जब हमारे फैसलों की दिशा सही होती है। दोस्तों, आज की हमारी पूरी बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं था, बल्कि याद दिलाना था कि जिंदगी हर दिन हमें एक नया अवसर देती है। अगर कभी आपको लगे कि कोई अपना संघर्ष कर रहा है तो उससे मुंह मत मोड़िए। हो सकता है उसे सलाह से ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत हो। एक सच्ची दोस्ती, एक खुली बातचीत और एक भरोसा कई बार पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान का संदेश भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि एक सुरक्षित समाज सिर्फ कानून से नहीं बल्कि जागरूक युवाओं से भी बनता है। और अब विदा लेने से पहले आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प कि मैं अपने सपनों को किसी भी गलत आदत से बड़ा मानूंगा। मैं अपने दोस्तों और परिवार का साथ दूंगा और एक स्वस्थ, सकारात्मक और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे किसी लत के नाम मत कीजिए। इसे अपने सपनों, अपनों की मुस्कान और अपनी पहचान के नाम कीजिए। इसी संदेश के साथ खुश रहिए, ख्वाब देखिए, मेहनत कीजिए। मुझे तो मेरी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत है, और शायद आज मैं आप में भी हमारी इस बातचीत से वो मोहब्बत जगा पाई। तो विदा लेते हुए फिल्म डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी गाना कार्यक्रम आप सुन रहे थे युववाणी उपासना की आवाज़ में। नमस्कार।

FM 106.6 MHz पर अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संगीत सरिता।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस।

0: लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बताओ बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए चंबल की कसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। संगीत तैयार

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती,
3: विविध भारती देश का रेडियो।
4: ओ मेरे पिया के रंगून पिया है महासटैली।
5: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
3: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
7: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
5: विविध भारती पर हर पल है खास।
3: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
8: आज के फनकार।
5: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
8: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
9: इश्क ने क्रेजी किया रे। अब आपको सुनवा रहे इस फिल्म का गीत, आवाजें श्री रामाचंद्र और पलक मुच्छल की, संगीत अल्ताफ सैयद का, बोल अतिया सैयद के।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर के युगल स्वरों में सुनी एक बार फिर इस फिल्म का गीत। धुन बनाई है रघुनाथ सेठ ने, रचनाकार हैं विनोद पांडे।

0: देविका सिंह के गाए इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
4: जी।
3: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल
3: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजे हैं और अब वक्त है सदाबहार गीतों का। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जय शेखर का प्यार भरा नमस्कार और सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत अमित खन्ना का लिखा हुआ। संगीत राजेश रोशन ने दिया है, फिल्म का नाम है नजराना, आवाज किशोर कुमार की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और रही अब सुनते हैं मंजिल फिल्म में किशोर कुमार को, गीतकार योगेश और संगीतकार आर डी बर्मन।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की हैं।

इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये सफर बस यहीं तक। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुनिए सबसे पहले राधा खरे, आशा तिवारी और उर्मिला पांडे को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: और रही, अब सुनते हैं मान सिंह और उनके साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: इस लोकगीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग बस यहीं तक एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में, करें थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3 करोड़ 76 लाख टन अनाज और 3 करोड़ 77 लाख

0: पानी की 117 किस्में। हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी सभा में आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। शाम 7:20 से खेती गृहस्थी पर केंद्रित कार्यक्रम किसान वाणी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आज रात 8 बजे होगा चित्रपट संगीत और 8:20 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। मनचाहे गीतों का आनंद लीजिएगा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनते हैं रात 9:30 बजे से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। 8:45 पर समाचार संध्या, 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब कल की सभाओं के कुछ खास आकर्षण। कल सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन गांधी चर्चा। भूले बिसरे गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 6:40 पर श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ आप सुनते हैं सुबह 6:30 बजे से। और हमारा नियमित दैनिक कार्यक्रम रोज की तरह हर रोज सुबह 7 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कल शाम 5:30 बजे आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्ज और लम्हे। एक और प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग, इसके प्रायोजक हैं NCERT द्वारा। कल सुबह 8:30 बजे सुनिएगा रूपक क्रांति पुत्र आजाद, लेखक होंगे सुधीर विद्यार्थी, प्रस्तुति विनोद कुमार की। उमंग का वक्त होगा कल सुबह 11 बजे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। FM बैंड 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन

0: ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारत टेक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा, टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बंपर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित, स्व सहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचकर 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे, जहां वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया और प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण किया, जहां राज्य की औद्योगिक नीतियों, कौशल विकास और धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि
1: मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्म अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है।
0: प्रदेश में मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से मशहूर विदिशा जिले के मानोरा धाम में आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली गई। भगवान जगदीश स्वामी बलभद्र और सुभद्रा की 22 फीट ऊंचे 2 मंजिला लकड़ी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, आरती और पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। मानोरा की ये रथयात्रा करीब 200 साल पुरानी परंपरा है और यहाँ 3 दिनों तक मेला चलेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने आज उपराय, सीतापुर और बड़ौनकला गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उपचुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधि या डराने धमकाने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के मुद्रकों और प्रकाशकों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद इस साल देश में 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार हुई है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब वैज्ञानिक सीधे खेतों में जाकर किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे। ये वे जिले थे जहां अलनीनो का असर पड़ने की आशंका थी। इन वैज्ञानिकों ने करीब 1 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के बहादुरपुर कृषि उपज मंडी में आयोजित कृषि सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के जरिए जिले के हजारों किसानों के खातों में राशि पहुंचाई गई है। इसके अलावा उन्होंने आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनों से भी संवाद किया। इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि
4: प्रधानमंत्री जी ने एनआरएलएम की शुरुआत, आजीविका मिशन की शुरुआत की, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की, क्योंकि हमारा भी सपना है विकसित भारत 2047 का सपना है। और अगर विकसित भारत 2047 बनाना होगा तो इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं होगा, जब तक बहुसंख्यक मेरी महिलाएं इसका भाग में आगे ना आए।
0: भारतीय सेना के सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने आज भोपाल स्थित सुदर्शन चक्र कॉर्प्स का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आर्मी कमांडर ने फोर्स को आधुनिक बनाने की कोशिशों और नई तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की। इसके साथ ही उन्हें भोपाल में होने वाली आर्मी डे परेड 2027 की तैयारियों की जानकारी दी गई। जवानों से बातचीत करते हुए आर्मी कमांडर ने उनके प्रोफेशनल रवैये और ड्यूटी के प्रति समर्पण की तारीफ की। भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ आज भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान से जुड़ी। प्रदेश में यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। क्रांति गौड़ ने कहा कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और घर के माहौल का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए सभी को नशे से दूर रहना चाहिए।
5: मैंने काफी सारी चीजें देखी हैं, जो इनके पेरेंट्स, आसपास के लोग ये जो नशा करते हैं, क्योंकि उससे उनको भी प्रॉब्लम है, देन उनके बच्चों का भी फ्यूचर, क्योंकि नशे से वो भी स्वस्थ नहीं है, देन उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स। तो ये चीजें क्या है, ये देख के लोग जब सीखते हैं तो ठीक नहीं है के लिए, देन उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि नशे से दूर रहें।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार और रिचार्ज पिट व चेकडैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। मेजबान इंग्लैंड ने आज सोफिया गार्डन्स में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बीमार होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में झाबुआ जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। गुना कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए हर महीने विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में जल जीवन मिशन की बैठक में कलेक्टर ने मल्टी विलेज स्कीमों के तहत उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने त्रिवेणी गौशाला का निरीक्षण कर जिले के हर ब्लॉक में मॉडल गौशाला विकसित करने के निर्देश दिए। राजगढ़ के पीडीएमसी प्रेशराइज सिंचाई परियोजना के तहत स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। बुरहानपुर जिले में जारी दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के सत्यापन के साथ झांझर और नेपानगर की गौशालाओं का निरीक्षण कर पशु प्रबंधन के निर्देश दिए गए। सीहोर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत छात्र छात्राओं को स्वच्छता के नियम सिखाकर नशा मुक्ति व सफाई की शपथ दिलाई गई। देवास जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला कृषकों, पशुपालकों और उत्पादक कंपनियों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने आरसीटी व आरटीआई आईटीआई के कौशल विकास पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए। और श्योपुर में नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी डॉक्टर करुणा कुमारी ने अधिकारियों को सभी निर्धारित इंडिकेटर्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में भारत टेक्स सम्मेलन में टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बंपर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। स्व सहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी आप प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे थे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:21 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनबे बारे सबई किसान भैया पंचों और बिन्ना पंचों को सतीश साहू
1: और राम कुमारी बहन की
0: राम राम, राम। और राम कुमारी बिन्ना इतने नो कागज लेके और आप बिल्कुल नजरें गड़ाए हो ऊपर तनक घड़ी की तरफ भी देख लो अपने किसान भैया बिन्ना हरे सोच रहे हैं कि अब नो जी कछु क्या नहीं रहे।
1: बिल्कुल सतीश भैया हम बता दिए थे कि आज अपन कार्यक्रम में काका लेके आए हैं। पहले तो अपने किसान भैया रहे जो घबरा रहे हैं पानी नहीं गिरो बोनी पश्चात फसलों की देखभाल पे अपन चर्चा करें।
0: बिल्कुल
1: संग ही देखो सतीश भैया आज रथ दोजे रथ यात्रा है जिको के सभी जने साल भर इंतजार करते हैं वो पे अपन चर्चा करें। संग ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 98वीं जो स्थापना दिवस है ओपे अपन चर्चा करें।
0: अरे वाह
1: संग ही जो देखो सतीश भैया किसानों को पसंदीदा कार्यक्रम है आज के गुरु साप्ताहिक क्रम में हेलो किसान वाणी वो भी सुने जी में हमारे किसान भैयाओं की समस्याओं को समाधान हुई है।
0: बिल्कुल
1: और संग ही भैया मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल रहे थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिन्ना तो बड़े अच्छे अच्छे आपने विषय बताए हैं तो अब इंतजार और न कराओ जाए शुरू करो जाए।
1: बिल्कुल भैया सबसे पहले तो हम किसान भैयाहरों को सभी जनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस पे कृषि वैज्ञानिकों सहित हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल
1: 98 वर्षों के अनुसंधान नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीकी के द्वारा अपनी कृषि को नई दिशा दी है। कृषि एवं किसानों की समृद्धि में ऐतिहासिक योगदान दो आप सभी जनों को एक बार फिर ये दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल राम कुमारी बिन्ना और संगे संगे आज को दिना होत है कि अपन सब जने मिलके भारतीय कृषि को इत की उन्नत कृषि को और उन्नत बनावे के लाने कदम से कदम मिला के अपन चले।
1: चल बिल्कुल भैया और यही के संगे देखो भैया अपन सभी जने दिना को बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इनमें भगवान जगन्नाथ उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों को लाखों श्रद्धालु खींच के गुड़ीचा मंदिर तक ले जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: विशाल शोभा यात्रा होते निकाली जाते हैं। और भैया देखो परंपरा के अनुसार ऐसा ही आज के दिन पूरे देश में रथ यात्राएं निकाली जाते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा करी जाते हैं। पूरा वातावरण देखो सतीश भैया मानो भक्तिमय हो जाते हैं। कहते हैं आज के दिन उनके स्वागत में इंद्रदेव प्रसन्न हो गए जरूर रिमझिम फुहारें गिरा उठे और आप सभी देख ही रहे हो। सो आप सभी जनों को रथ ध्वज रथ यात्रा की शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आज सभी के जीवन में खुशियों की बरसात करें आप सदा प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के संगे अपन एक बार फिर रथ दोजों की सभी जनों को
0: बिल्कुल बिल्कुल बिन्ना और पूरे देश के संगे अपने सागर में भी रथ दोजों की बहुत जोरों से जो है धूम है तो निश्चित रूप से बिन्ना अपन और भी सभी जनों को शुभकामनाएं देवी के संगे और इतने बैठे हैं और अब आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आपका चर्चा करने बिन्ना।
1: और भैया देखो समय को देखत भाई तो अपन चर्चा बढ़ाते जाते हैं। तो किसान भैया देखो बोनी तो अपन ने अपनी व्यवस्था करके खेतों की तैयारी की संगे कर दी मनो अब बात आत है सतीश भैया उनकी देखभाल सुरक्षा और संरक्षण की कि वे बड़वार फूलन फलन और पकवे तक उनकी अपन निगरानी करें।
0: बिल्कुल
1: अब अपन देख रहे हैं कि मानसूनी बारिश जो है कछु कम दिखा रही और कहूं भाई और कहूं नहीं भाई सो फसल जम्बे और बढ़वे के में समस्या समझ में आ रही है। किसान भैया हरे देखो भैया थोड़े परेशान हैं और हुई कायन है सतीश भैया। सो भैया हरों को जो करो चाहिए कि अगर अपने पास पानी की व्यवस्था हो और अपन को ऐसी जरूरत समझ में आ रही है तो स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई शुरू कर दो चाहिए।
0: बिल्कुल करो चाहिए
1: और संग में अगर कोनो भी दवाई रसायन वगैरह अपने खेतों में फसलों में डालवे जा रहे हैं जैसे अपने खरपतवार नियंत्रण के लाने या कछु भी तो भैया सलाह जय दे है कि भाई अबे
0: नहीं डारे
1: और अगर डारे तो सुबेरे या संजा को डारे। और फिर आज हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में देखो सतीश भैया विशेषज्ञ आपको सलाह दे हैं।
0: बिल्कुल
1: सोपन को
0: हाँ हाँ और राम कुमारी बिन्ना हम जा के रहे थे कि देखो अपन और हमेशा कहते हैं कि कतारों में बोनी करो मशीन से बोनी करो ऐसी अपन ऐसे कहते हैं

0: के बीज माटी के नीचे जाए, तो कम से कम अगर पानी नहीं गिर रहा हो तो माटी के नीचे थोड़ी बहुत नमी जो है वो खम्बो लेके और जियत रहे। अब हो भाव का है जो कोई चीज नहीं मानत और मशीन से बोनी न करके और छिड़क वहां बोनी करत है, तो ऊपर गर्म धरती पर वो बीज जो है भलो थोड़ा बहुत पानी जब गिर गए हुए, लेकिन अब चूंकि पानी नहीं गिर रहा हो तो धरती गर्म है और वो गर्म धरती पे वो बीज डरो है तो वो जो है मरबे की जल्दी कगार पे आ जाता।
1: उसे भैया सतीश भैया बताएं कि जो मैन नाली पद्धति है अगर उसे बोनी करत है
0: बिल्कुल
1: तो बा ज्यादा कारगर ऐसे में होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन हम जही के वो चाहते हैं कि देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आज अपन स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो जितने भी अनुसंधान होते हैं जो जो बातें के कृषि वैज्ञानिक बताते हैं विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपन को मानो चाहिए और मान के और अमल में ले आओ चाहिए जिनमें अपनी खेती बाड़ी जो है बिगड़ न पावे।
1: बिल्कुल भैया, और उनको सुधार भी को प्रयास करो चाहिए।
0: और रामकुमारी बिन्ना एक पहले के अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं जी कछु महत्वपूर्ण संदेश सुना
1: सुन लेते। बिल्कुल भैया,
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
5: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
6: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
4: बात बन जाए,
6: 287 मेरी चाय।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो देखो राम कुमारी बिन्ना, आप अबे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आज बड़ो विशेष दिन है, जो दिन दिवस पे अपन चर्चा करी ओके हिसाब से तो है ही, और संगे संगे जो आज गुरुवार है और अपने किसानों की खुद की आवाज में बे जो किसान वाणी के कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी जो क्रम सुनत है वो को देना है, तो निश्चित रूप से ये मैं आज उनको उत्सुकता हुई है कि कौन कौन से किसान भैया बिन्नहरों ने फोन करे, कहाँ कहाँ के किसान हते
6: और मूल प्रश्न सवाल करे, हाँ, प्रश्न करे। हाँ,
5: तो बिल्कुल अपन, हमें लगा तब देरी न करो चाहिए, जल्दी से कार्यक्रम को सुनवाओ चाहिए।
6: तो बिल्कुल भैया, सुनते हैं अपन साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: भैया आज है गुरुवार, माने वो दिन जब आप औरों की अपनी आवाज को कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित करो जात है, जो उनको नाम है हेलो किसान वाणी। तो बिल्कुल भैया आज भी नए चूक हैं जो कार्यक्रम आप औरों को लेके आ गए हैं। और सबसे पहले जानकारी देते हैं कि आज के हमारे एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे किसान श्रोता एक कार्यक्रम

0: हमसे जुड़न लगे हैं, माने उनके फोन आने लगे हैं। तो जानत है कि आज के पहले किसान श्रोता को है का, उनको सवाल है, कहां से भी बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी।
1: हेलो किसान वाणी, नमस्ते सर।
0: नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं आप?
1: हम भोले लोधी खिरिया से सर।
0: भोले लोधी खिरिया से, बताओ भोले भैया, आज का प्रश्न लेके आए हो आप?
1: प्रश्न हो का, अगर पानी खुला तो फसल तो ऐसा ही नहीं।
0: पानी को इंतजार है जोरों से, है ना?
1: और
0: तो काका लगाओ है आपने?
1: और सूरा भी लगा सर अपन ने।
0: तो मुख्य रूप से आप का पूछो चाहत हो भैया, बताओ?
1: सर जाऊ चाहत है, जैसे और सूख रहा सर, कोनो दवाई में बैठा सकता।
0: चलो, आपको प्रश्न भैया आज के हमारे विशेषज्ञ तक पहुंच गए है, और आज हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं जीपी विश्वकर्मा जी, वे आपको बता रहे हैं। सुनो।
2: हाँ भैया, आपने बीज उपचार किया था ना?
1: जी सर।
2: बोनी मशीन से बोया था कि छटका बोया?
1: छटक के बोया था।
2: हाँ, वही कारण है, क्या है कि ऊपर से अब नमी सूख रही है नहीं? जी, जी। वो जो छटक के बोए है, कई किसानों ने तो पानी खुलने के बाद जो बोनी की है वो उर्दा अब जमा ही नहीं है, अब है ना, सूखे में पड़ा है वो।
1: जी, जी।
2: और जो अपन को थोड़ा बहुत नमी मिली थी उससे वो जम तो आया, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, सूखने लगा है। अब एक उपाय ये है कि अगर पानी की व्यवस्था हो तो पानी दो।
1: हाँ जी, और कछु उपाय नहीं?
2: और कछु उपाय है नहीं, काहे से कि खेत सूखा है नहीं?
1: और क्या,
2: वो पानी देने के अलावा कोई उपाय नहीं। अगर आप दवाई भी देते हो तो उसके लिए भी नमी चाहिए खेत में।
1: जी सर।
2: तो इसलिए अब तो अभी फिलहाल तो कोई उपाय नहीं है, पानी का इंतजार करो, जैसी बारिश आती है या फिर आपके पास पानी हो तो स्प्रिंकलर चला दो।
1: कच्ची किसान तो चलाने लगी है अपने देश के अंदर।
2: हाँ, अब चलाना पड़ेगी। हमारा सभी किसानों से ही निवेदन है जिन्होंने बोनी कर दी है, और जो खासकर छिटकुआ बोनी जो की है उनमें तो स्प्रिंकलर आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा कि फसल सूखने लगेगी।
1: जी।
2: नमी उतनी नीचे तक गई नहीं, अभी 4 इंच तो बारिश ही हुई अपने यहाँ, 6 इंच है नहीं?
1: जी सर।
2: और नमी नीचे से आ नहीं रही, जमीन जब नीचे तक ज्यादा नमी पकड़ जाती है तो ऊपर आती रहती है नमी, वो है नहीं, वहाँ गर्मी ज्यादा है नीचे जमीन में।
1: जी सर,
2: इस कारण से थोड़ा दिक्कत तो होगी। अब किसानों से यही हमारी सलाह है कि जब तक पानी खुला है और ऐसी फसलें जो लगा दी हैं जो सूख रही हैं उनमें अपन स्प्रिंकलर से सिंचाई जरूर कर दें।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं?
3: ग्राम संजरा तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर से भोले लोधी बोल रहे हैं।
0: ग्राम संजरा गढ़ाकोटा से भोले लोधी।
3: जी सर।
0: चलो बताओ भैया, भोले भाई, आज का आपको प्रश्न है?
3: मक्का में खाद डालने कितने दिन में डालें?
0: मक्का कितने दिन पुरानी है आपकी?
3: 18-20 दिन की हो गई।
0: 18-20 दिन की हो गई। चलो, आपको प्रश्न भैया विश्वकर्मा जी ने सुन लो, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप।
2: हाँ भैया, आप अच्छा है ना पौधा?
3: पौधा तो सही है सर।
2: हाँ, तो दे सकते हो, 15-20 दिन के बाद आप यूरिया रख सकते हो, मगर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि नमी होना चाहिए खेत में।
3: जी सर।
2: या फिर एक काम करें कि अगर सिंचाई का साधन है तो पहले थोड़ा सा सिंचाई कर दें और एक दिन बाद फिर खाद रखना चालू करें, क्योंकि इसमें नमी नहीं होगी तो नुकसान हो सकता है फसल के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखो कि अगर सिंचाई का साधन है आपके पास तो हल्की स्प्रिंकलर से सिंचाई करके और फिर यूरिया रख दो पेड़ों के पास।
3: सर, DAP खाद है जो यूरिया में मिला के दे सकते हैं?
2: नहीं, वो तो पहले दे दिया होगा ना आपने DAP?
3: नहीं, पहले नहीं दिया सर। पहले नहीं दिया। जी।
2: ऐसा करना कि पहले DAP रख दो फिर यूरिया डालते जाओ।
3: जी सर।
2: जैसे अपन पेड़ के पास थोड़ा सा अपन ने गड्ढा बनाया, जड़ ना निकल पाए, ध्यान रखना, तो उसमें थोड़ा सा पहले DAP और यूरिया डाल के थोड़ा सा उसको मिट्टी ऊपर से करते चले जाओ, इस तरह से उसको फायदा हो जाएगा। यूरिया तो जल्दी लीच हो जाता है लेकिन DAP में समय लगता है, तो ये देख लो, अगर पानी का साधन है तो सिंचाई करके और फिर आप खाद रख सकते हो, और थोड़ा सा नहीं तो और इंतजार कर लो 2-3 दिन।
3: जी सर।
2: पानी गिर जाए थोड़ा सा, 1-2 झला पानी हो जाए, उसके बाद यूरिया रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
3: जी सर।
0: बिल्कुल भैया, हमारे भी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि अच्छो पानी गिर जाए और किसानों की फसलें जो हैं बिगड़ न पाए, अच्छा उत्पादन हुए। तो ऐसा ही एक लोकगीत भी अपन सुने लेते हैं भैया, बरसो राम झला झलियां, और ये लोकगीत को गा रहे हैं काशीराम अहिरवार और उनके संगी साथी।

0: और भैयाहरों काशीराम अहिरवार और इनके संगी साथियों के गाए वर्षा गीत के बाद अपन फिर से हेलो किसान वाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानत है कि अपने आज के अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो
1: सर जी, नमस्ते।
0: नमस्कार भैया, को बोल रहे?
1: सर विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा था।
0: विजय भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और बताओ आज का प्रश्न ले आए हो।
1: सर जो है कि सोयाबीन बिना खाद का बोया था सर।
0: अच्छा,
1: तो अब खाद डीएपी कितने दिन में छिड़काव करें, जा पूछ रहा था।
0: चलो भैया, एक पहले भी अभी एक श्रोता ने जो ही प्रश्न पूछो है जी। एक बार फिर से आपको उत्तर दे रहे हैं। हाँ। सुनो आप
2: उपाध्याय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने खाद पहले दिया नहीं था, अब देना चाहते हैं। और आप देखो साहब उपाध्याय जी, क्या है कि नमी तो है नहीं खेतों में, 6-7 दिन से खुला हो गया ना पानी। आपके यहाँ पानी गिर गया क्या?
1: हाँ सर, कल गिरा है पानी।
2: अच्छा, गिर गया ना
1: जी सर।
2: कितने दिन की फसल हो गई?
1: बोनी अब 10 तारीख को भाई थी सर, हालांकि अभी तो फसल छूटी है।
2: तो अभी तो रुक जाओ ना, अभी तो बहुत छोटा पौधा है जी। अभी थोड़ा सा और कम से कम 20 दिन की फसल हो जाए ना, 20-25 दिन की फसल पर आपको डीएपी का छिड़काव या यूरिया स्प्रे यही करना है, ठीक है ना?
1: और 1 एकड़ में सर कितने केजी खाद डाल रहे डीएपी
2: अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, है ना?
1: हाँ सर, जैसी खुला,
2: ज्यादा से ज्यादा 10 किलो 1 एकड़ में फैला देना है नहीं?
1: जी जी जी।
2: अब गुड़ाई तो कर नहीं पाओगे।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: तो वैसे ही फैलाना पड़ेगा, और फैलाने के लिए क्या है कि खेत में नमी अच्छी होना चाहिए।
1: हाँ।
2: और जब तक नमी नहीं है तो क्या होता है, डीएपी लीच होने में समय लगता है। वो आप पानी में भी डालोगे तो उसको घुलने में समय लगता है, यूरिया जल्दी घुल जाता है। तो उसको क्या है कि ज्यादा नमी चाहिए थोड़ा सा खेतों में। और आप अगर सिंचाई का साधन है तो सिंचाई करके दे सकते हो, डीएपी डाल सकते हो। और अच्छा पानी गिर गया है तो आप सुबह टाइम 6-7 बजे डीएपी का भुरकाव कर सकते हो।
1: सर एक प्रश्न है सर, गेहूँ में बोरियों में गेहूँ रखू है।
2: हाँ।
1: तिलूला हो गया सर, में क्या करें सर?
2: खाने को रखा है कि बीज को रखा?
1: हाँ, सर बोने को और खाद को।
2: अच्छा, दोनों ही में हो गए।
1: हाँ।
2: तो सबसे पहले तो उपाध्याय जी ये करो कि आप उस सारे गेहूँ को छान डालो। और छानोगे और उससे ग्रेडिंग कर लो, जो उसमें टूटा फूटा दाना है, जो खराब हो गया है वो निकाल दो। इसको निकालने के बाद फिर उसमें जो भी बोरियां हैं, अगर आपने खुले में रखी हैं या बंडा में हैं, तो उसको प्लास्टिक से ढांकना है आपको, दीवार से थोड़ा सा 6 इंच दूर आप इसकी थप्पी बना करके और चारों तरफ से रख दो। और उसमें ईडीबी एम्पुल्स घुना के इंजेक्शन बोलते हैं उनको
1: जी सर जी।
2: हाँ, घुना के इंजेक्शन आप लगा दो। और साथ में नीम, अभी काफी धूप निकली है, नीम डाल दो सूखने के लिए 10-12-15 किलो, और सभी में जो है नीम की पत्ती मिला करके और रख दो।
1: ठीक।
2: अगर बीज के लिए रख रहे हो तो कोई भी कीटनाशक दवा को मिला करके और वो उसको रख दो, नहीं तो वो आपका उस समय तक पूरा कुछ नहीं बचेगा, खोखला हो जाएगा पूरा का पूरा गेहूं। तो इसको विशेष ध्यान रखना है, आप इसको छान लो, ग्रेडिंग कर लो और उसको अच्छी तरह से और धूप में डाल दो 1-2 दिन, जब तक खुला है पानी, और उसको फिर बोरियों में भर के जब ठंडा हो जाए आपको एयर टाइट कर देना है, हवा नहीं अंदर जाना चाहिए ना बाहर आना चाहिए। इस तरह से आप प्लास्टिक से ढक के उसको, ईडीबी एम्पुल्स के नाम से आते हैं वो, उसको आप हर एक बोरी में एक एक लगा दो। और लगाना कैसा है, आप एक डंडे में बांधोगे, उसको बांधा धागे से, और उसको तुरंत फोड़ के और सीधे बीच बोरी तक पहुंचना चाहिए वो।
1: ठीक।
2: हर बोरी में लगा दो एक एक।
0: नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। हेलो।
3: हेलो।
0: हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी।
3: ग्राम मंजिला सर, भरत अहिरवार बात कर रहे थे सर।
0: बताओ भरत भाई, क्या प्रश्न लेके आए हो आज?
3: सर पहले सर जी, सर मूंगफली में सर दवाई डालने हैं, बहुत कचड़ा है और सर उड़दा भी है।
0: अच्छा, तो मूंगफली कितने दिन पुरानी है आपकी बोनी?
3: 20-25 दिन हो गए सर।
0: और उड़दा?
3: सर नहीं सर, और अलग से भी बाया उड़दा। सर ऐसी दवाई बताओ कि सर जो मूंगफली को जो कचड़ा है उड़दा भी नहीं मारे और कचड़ा मर जाए।
2: आपने मिक्स क्रॉप बोई है क्यों? मिला
3: के मिक्स क्रॉप भी बोई सर, और एक जगह सर ऐसे ही उड़दा बस
2: बोया। अभी समय ऐसा ही है, किसान को बहुत सोच समझ के बोनी करना चाहिए कि एक फसल अगर हमारी खराब होती है तो दूसरी आ जाए, है नहीं? अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत कचड़ा है
3: जी सर, चौड़ी और सकरी पत्ती के सभी प्रकार का कचड़ा है।
2: हाँ हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप उधर जाएंगे जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है ना, उस पर जा करके आप उसको दवाई मांगेंगे, तो इस क्या होता है फसलवार दवाइयाँ आती हैं। समझ गए, उसको पूछ करके आप चौड़ी सकरी पत्ती वाले जो भी खरपतवार हैं उसके लिए कौन सी उपयोगी दवा होगी उसका आप छिड़काव करें। अभी सूखे में नहीं करना, क्या पानी गिर गया आपके यहाँ?
3: सर अभी तो नहीं पानी गिरे सर, लगभग
2: कितने दिन हो गए
3: सर जी? हो 15 से 16-17 दिन। हाँ, तो भैया पानी आप, जाना जरूरी है।
2: हाँ, अभी आप बिल्कुल दवाई न डालना जब तक पानी न गिर जाए, जब तक खेत में नमी नहीं होगी दवा का प्रभाव नहीं होगा भैया।
3: जी जी,
2: उसकी जड़ तक जो है वो दवा पहुंचना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि खेत में नमी पर्याप्त हो, और नमी पर्याप्त है नहीं तो ऐसे में अगर दवा आप डालते भी हो तो सूखी मिट्टी पर दवा डालने से कोई उसका मतलब नहीं है, पैसा आप बर्बाद करोगे, इसलिए थोड़ा सा रुकें। पानी शायद संभवतः 1-2 दिन में गिर जाएगा, या फिर तो आपके पास पर्याप्त पानी हो तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करके, और जितने में स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करते हो उसमें आप दवा का प्रयोग दूसरे दिन कर सकते हो।
3: जी जी जी सर,
0: ठीक है भरत भाई।
3: जी जी सर,
0: चलो भैया बहुत धन्यवाद के आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। फोन लगाओ और अपना प्रश्न रखो। हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ जी, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी।
4: हम बोल रहे थे लोचन भैया बेसनपुर गांव से, जिला सागर।
0: लोचन भैया
4: जी,
0: तो लोचन भाई बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में, और बताओ के आज का प्रश्न लेके आए हो।
4: 2-3 प्रश्न लेके आए बस एक सब।
0: चलो बताओ, आप कोशिश रहे कि आपके सब प्रश्नों को उत्तर मिले।
4: पहला प्रश्न जो है, हम बैगन लगो है भट्टा, वो में कालू कालू दाग हो रहा है धब्बा।
0: भट्टा में काले काले दाग हो रहे हैं, कहाँ? पत्ती पे हो रहे हैं कि फलों में हो रहे हैं कि तना पे?
4: फल में हो रहा है, फल में।
0: अच्छा,
4: इल्ली भी लगी है फल को, छेद भी कर रही है।
0: अच्छा चलो, तो एक एक प्रश्न को उत्तर दे जाए आपको, है ना?
4: हाँ हाँ।
0: चलो, तो आज विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, वे बता रहे हैं पहले।
2: हाँ भैया, भट्टा कितनी जगह में लगाए हो आप?
4: भट्टा लगा उसके कम से कम 500-100 पेड़े।
2: 500-100 पेड़े पहली बार आए फल की, पहले भी आ चुके?
4: वे तो पहले लगाए थे गर्मियों में।
2: अच्छा, गर्मियों के हैं, मतलब 2-4 बार तोड़ चुके होंगे उनको, नहीं?
4: हाँ।
2: अब क्या है कि बरसात का मौसम है, कीड़े तो ज्यादा होते ही हैं बरसात में। आप एक काम करें कि नीम की पत्ती ले लो, 5 किलो नीम की पत्ती, उसको लेकर के तोड़ के, और 5 लीटर पानी में उसको भिगो दो एक बाल्टी में, अच्छी तरह से भिगो के, और जब वो 24 घंटा हो जाए उसका अर्क निकले आए, तो उसके क्या करना है फिर आपको

0: छिड़काव कर देना घोल का, और साथ में एक काम और करना है, नीम का तेल बाजार में मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जी वाली दवाइयां हैं तो अपन क्या है जैविक दवाओं का प्रयोग करेंगे। नीम की पत्ती है, निमोली का तेल है, राख राख डाल सकते हो, ठीक है ना भैया। 1 किलो राख अच्छी तरह से छान लो, 50 पौधों के लिए पर्याप्त हो जाएगी, और उसमें आप जो है 25 ml एक ढक्कन मिट्टी का तेल मिला करके अच्छी तरह से उसको पेड़ों पर भुरक दो, ठीक है ना।
1: चलो अब अगली समस्या बताओ लोचन भाई।
2: अगली समस्या जा है साहू जी के, हमने अभी जी नई पौध तैयार करी है बरसात बारी
1: काई की पौध
2: जी भटा टमाटर की।
1: अच्छा,
2: अब उनके पेड़ लग भी के हो रहा है, अब तो जो पानी खुलो है
1: हाँ।
2: तो उनकी जड़ उपचार कैसे करे जी, मैं आगे बीमारी न बढ़े कछु।
0: बहुत अच्छी बात है, और अब लगाने का समय है निश्चित तौर से, अब चूंकि पानी नहीं गिर रहा ऐसे में लग नहीं सकते, उसमें आप एक कर फपूंद नाशक दवा कार्बनडाजिम या मैनकोजिब जो भी मिल जाए, एक फपूंद नाशक दवा को एक बाल्टी में घोर के और उसको आप छिड़क दो उस पे, तो क्या होगा फपूंद के कारण जड़ सड़न नहीं होगी, जड़ों में रोग नहीं लगेगा और आप इसको बचा सकते हो। अगर कीड़ों का प्रकोप हो रहा तो थोड़ी सी छन्नी से छान के बारीक राख इसका प्रयोग कर सकते हो, और नीम के तेल का और नीम के अर्क जो नीम की पत्ती का घोल है ना, इसको जरूर आप जो है 2-3 दिन के अंदर से डालते जाओ
2: जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दो भाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आज के विशेषज्ञ जीपी विश्वकर्मा जी ने जो जो उपाय आपको बताए हैं जी आप अपनाओ तो निश्चित रूप से आपको भैया फायदा मिले। आपने फोन करो, हिस्सेदारी करी कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। और भैया एक बार फिर से आप औरों लोकगीत सुनवावे को समय आ गयो है, मनोरंजन करवावे को समय आ गयो है, तो अगले लोकगीत के रूप में हम आल्हा लेके आए हैं भैया, और एकों गा के सुना रहे हैं जगदीश विश्वकर्मा।

0: जगदीश विश्वकर्मा को गाँव भाव जो आल्हा अबे अपन और उन्हें सुनो भैया और के बाद में फिर अपन जानते हैं कि आज के अगले श्रोता को है। हेलो
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया।
1: राम बाबू उरा ग्राम मुर्गा दरारिया सर।
0: राम बाबू मुर्गा दरारिया।
1: हाँ
0: कहाँ है भैया जो मुर्गा दरारिया?
1: जनकगढ़ के पास।
0: तो कहे थे मुर्गा और का पाले जात का?
1: हाँ ग्राम मुर्गा दरारिया सर।
0: चलो ठीक है बताओ भैया का प्रश्न है आज राम बाबू जी?
1: तिली सूख गई है सर, कौन सी बुआई कर दी है हम फसल की?
0: तिली सूख गई है सुबह अलग कर रही है आपने?
1: हाँ
0: अब का बोए जा पूछ रहे आप?
1: जी सर हम रेट में सुन लेंगे।
0: चलो ठीक है विश्वकर्मा जी तक आपकी बात पहुंच गई है वे आपको बता रहे हैं।
2: तिली सूख गई है भैया आपकी क्योंकि अब सूखा की साल है, इस वर्ष तो कई किसानों को नुकसान हो रहा है। तो जो किसान अभी अभी तुरंत ऐसी फसलें जो सूख चुकी हैं अगर उनकी जगह कोई अन्य फसल लगाना चाहते हैं तो उसमें आप अभी उड़द की फसल दो चार दिन के अंदर अगर पानी गिर जाता है तो उड़द और मूंग की फसल लगा सकते हैं। अन्य सोयाबीन का समय निकल गया, दो चार दिन के अंदर अरहर की बोनी कर सकते हो। बाकी फसलें तो सभी लगभग 10-10, 15-15 दिन की हो गई हैं। अगर हम ज़्यादा लेट बोते हैं तो फिर हमें आगे जा कर के इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अभी उड़द अरहर का आप 2-3 दिन के अंदर अगर बो सकते हो, मगर आप अगर ऐसे में बो रहे हो तो बोनी मशीन से ही आप बोनी करेंगे, ठीक है ना भैया? छिड़काव बोनी नहीं करें।
0: ठीक है राम बाबू जी आपने तहसीलदारी करी कार्यक्रम में, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो नमस्कार भैया।
3: गोविंद कुशवाहा चांदा
0: मऊ। चलो भैया गोविंद भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको और बताओ क्या प्रश्न है आज को?
3: प्रश्न सर जो है कटहल को तो लगो सर।
0: अच्छा
3: हाँ तो वो 20 साल को होगा सर, फल नहीं दे रहा है।
0: 20 साल को होगा अभी भी फल नहीं दे रहा?
3: हाँ फल नहीं दे रहा।
0: चलो भैया तो आपकी जब बात हमारे आज के विशेषज्ञ तक पहुँच गई है भी आपको बता रहे हैं।
2: देखो भैया 20 साल में तो फल देना लगना था उसको, 15 साल के बाद फल देने लगता है कटहल। कहाँ खड़ा है आपका पेड़? पानी की जगह तो नहीं है या पथरीली जगह में तो नहीं है?
3: नहीं पानी जो आप देते नहीं है तो भरा नहीं देते सर।
2: अब एक काम करें आप, थोड़ा सा इसमें जितनी छाया है उस पेड़ की, 20 साल का पेड़ तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, जितने में छाया है उसकी एक कम से कम 1-1 फुट मिट्टी निकालें और उस मिट्टी को निकालने के बाद उसमें 1 क्विंटल पचा हुआ 2-3 साल पुराना खाद और कम से कम 2 किलो DAP और कुछ उसमें सुपर 1 किलो और यूरिया 0.5 किलो यूरिया और पोटास 0.5 किलो पोटास, ये सब मिक्स करो अच्छी से मिट्टी में और मिला करके आपको क्या करना है उसको फिर से भर देना है, फिर से उपजाऊ मिट्टी उसमें मिला करके और उसको भर दें और उसको अच्छे से सिंचाई कर दें। दूसरा एक काम और करें कि आप जो कटहल का नीचे से जो जमीन से लेकर के 2 फुट तक, इसके लिए क्या करना है बोर्डो मिक्सचर आता है बाजार में मिलता है बना बनाया, उसको आप ला करके उसको पुताई कर देना। अगर वो नहीं मिलता है तो जो चूना होता है ना पोतने वाला चूना, कलाई जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके और उसको 2 फुट तक जितने भी और भी पेड़ हैं उनमें सबकी पुताई कर देंगे तो नीचे से जो कीड़े जाते हैं वो कीड़े उस पर नहीं जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि फल आने के पूर्व कोई भी एक रासायनिक दवा का प्रयोग करके कीट नियंत्रण आपको पेड़ पर करना पड़ेगा जिससे उसके फल रुकने लगेंगे।
0: ठीक है गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद हिस्सेदारी करवे के लाने और जो जो उपाय आज के विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने आपको बताए हैं जे अपनाओ तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल कटहल के प्राप्त हुई है। तो विश्वकर्मा जी आज आप एक कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भैया बिन्नाहरों को इतनी अच्छी जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भैया हरों जो है तो आज को कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, एक कार्यक्रम में बहुत से किसान श्रोताओं ने अपने फोन लगाए अपनी शंकाओं को समाधान करो और जोन किसान भैया हरे सुनत है फोन नहीं लगा पाता है उनसे भी निवेदन है कि अगले कार्यक्रमों में वे भी फोन लगाएं। अब चलत चलत आप और बता दें भैया कि आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हते सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा जी, कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है, यही आशा और यही उम्मीद के संगे फिलहाल हमें दो अनुमति, राम राम।

0: तो देखो सतीश भैया, अब अपन ने अपनो साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनो। निश्चित रूप से हमारे किसान भैया हरे हमारे विशेषज्ञों की सलाह अनुसार वो पे अमल करके लाभ लें।
1: बिल्कुल, और जो किसान भैया हरे सुनत हैं मनो फोन नहीं लगा तो उनसे भी अपन अपील करते हैं कि वे जरूर अपनी समस्या खोन लेके और हर गुरुवार को दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक कार्यक्रम में फोन लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया, और अब बारी है मंडी के भाव की। तो गेहूं रहो 2300 से 2800 रुपया प्रति क्विंटल, चना 4800 से 5700 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 5000 से 9850 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन 5000 से 7000 रुपया प्रति क्विंटल, बटरी 2700 से 3400 रुपया प्रति क्विंटल, और सरसों को भाव रहो भैया 5000 से 7200 रुपया प्रति क्विंटल।
1: बिल्कुल राम कुमारी बिन्ना, और हम बता दें आज के मौसम की जानकारी। तो आज को अधिकतम तापमान रहो 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहो 27 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता की बात करें तो जा रही 70%। तो इन्हीं सूचनाओं के संगे राम कुमारी बिन्ना अब श्रोताओं से विदा लेवे को समय आ गयो है। तो अपन अनुमति लेते हैं सभी जनों को सतीश साहू
0: और राम कुमारी बहन की
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी पर केंद्रित कार्यक्रम किसान वाणी एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जय शेखर का प्यार भरा नमस्कार। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म नमस्ते लंदन से। आवाज हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की है, संगीत हिमेश रेशमिया का, और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

मणि के सागर केंद्र से चित्रपट संगीत और कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है फना। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, संगीत जतिन ललित का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आइए अब सुनते हैं पलक मुशाल को फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में। अमाल मलिक का संगीत है और गीत है मनोज मुंतशिर का।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म मदहोशी में उदित नारायण और साधना सरगम को। शकील आजमी के बोल संगीतकार हैं रूप कुमार राठौर।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये सफर बस यहीं तक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर की

से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संगीत सरिता। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं गुलजार की ये रचना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से संगीत सरिता, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है। देखो मैंने, ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं।

इस गजल के साथ ही संगीत सरयता का ये सफर बस यहीं तक। FM बैंड 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस।

0: प्रैक्टिस है, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं और अब वक्त है मन चाहे गीतों का। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जय शेखर का प्यार भरा नमस्कार और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है सुर, आवाज महालक्ष्मी की, निदा फाजली के बोल और MM क्रीम का संगीत है। फरमाइश सबसे पहले लेते हैं इस गीत में खतों के माध्यम से। फरमाइश सनावत से मोहम्मद सादिक, अहमद शाकिर, अलकमा खत्री, अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत को सुनना चाहा है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, साकिब छोटू, मोइन, दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू रोशनी अजय और कृष्णा देवी गंगराड़े, सिंघाड़ तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा भारती, शालिनी और कामेश यादव। इसी गीत की एक और फरमाइश है, लिखने वाले हैं सनावत से ही दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता मुस्कान, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। तो सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर सुर फिल्म में महालक्ष्मी को।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तररमपम से। सुनिधि चौहान और शान की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, विशाल और शेखर का संगीत है। खतों के माध्यम से हमें फरमाइश मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत और इनके बहुत सारे साथी। गांव चौलहदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार और इनके बहुत सारे साथी। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश खत के माध्यम से ही मिली है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की। इसके साथ एक और फरमाइश है ग्राम मोहली तहसील बांद्री जिला सागर से शिव नारायण शास्त्री, रश्मि तिवारी, नंदिनी सत्यम, शिवम और नितिन तिवारी। ये सारी फरमाइशें खत के माध्यम से थीं और सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर तररमपम, इस फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अब कार्यक्रम की सारी फरमाइशें इसके बाद की हम व्हाट्सएप से लेंगे। ये फरमाइश हमें मिली है सागर से, गुजराती बाजार से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले बजाज, रूपेश मनवानी, सीमा महक, अंजलि भूमि, बरखा और प्रियंका मनवानी। शास्त्री नगर वीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह गिल, गुरनीर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह। इसी गीत को सुनना चाहा है, ये फरमाइश हमें मिली है व्हाट्सएप से ही, ग्राम बिनेका, तहसील बंडा से बलराम सेन, अरविंद, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति ने। सुनिए अपनी फरमाइश पर ताल फिल्म में आनंद बख्शी की शब्द रचना को एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया है। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की।

अगले गीत की व्हाट्सएप से फरमाइश हमें मिली है। लिखने वाले हैं बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत सिंह, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप सिंह, दमन, अभिजोत और इनके बहुत सारे साथी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। इसी गीत को सुनना चाहा है सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और अदीब ने। सुनिए अपनी फरमाइश पर इंदीवर का लिखा हुआ गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। आवाज कुमार सानू की है, फिल्म का नाम है तमन्ना।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को फिल्म सूर्या में। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री और इनके बहुत सारे साथी। जालना से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी, अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका और साईशा। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का ये सफर बस यहीं तक। FM 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, करें थोड़ा सा इंतजार।
1: तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम अब से बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आ आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आई। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। रास्ते अब सीधे नहीं रहे, जैसे किसी ने मोड़कर सपनों की दिशा बदल दी हो। कदम बढ़ते हैं, पर हर कदम पर एक अदृश्य बंधन सा महसूस होता है। आजादी और जकड़न के बीच दिल झूलता रहता है। नींद में भी ख्वाब डर कर सिमट जाते हैं। सीने में कोई टूटी हुई खामोशी चुभती रहती है, और फिर भी सांसों की डोर किसी उम्मीद से बंधी रहती है।

बिजली की चमक में जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है, पर बरसात सब शब्द भिगा देती है। भीगी हवाओं में तेरा एहसास यूं उतर आता है जैसे तू पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हर बूंद दिल पर दस्तक देती है और मन बस तुझसे मिलने की जिद कर बैठता है। ये मौसम नहीं कोई अधूरी चाहत सी लगती है जो बाहों में सिमट जाना चाहती है। कांपती ठंड में भी दिल की गर्मी तुझे पुकारती है जैसे बस एक आलिंगन बाकी हो। और मैं इस बरसात में बस इतना चाहती हूँ कि तू पास आकर मुझे थाम ले।

पलकें जब भी झुकती हैं तो भीतर एक छवि जगमगा उठती है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। लज्जा भी अब श्रृंगार बनकर चेहरे पर ठहर जाती है और हर धड़कन में उसका ही स्पंदन बस जाता है। हवाओं में भी अब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है। मेरे नयन रूपी दर्पण में अब बस साजन बसा हुआ है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हाथों में उसका हाथ आते ही जैसे सारी दुनिया थम गई। खुशी इतनी कि शब्द भी अब साथ नहीं दे पा रहे थे। दिल हल्का होकर आसमान में उड़ने लगा, मानो जमीन का सहारा ही छूट गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी उलझन है, जैसे चलना भी अब मुस्कुराने लगा हो। आंखों में चमक है, होठों पर खामोशी, और मैं उसे थामे हुए इस खुशी में बहती जा रही हूँ।

फूलों की खुशबू भी आज कुछ और ही रंग लिए हुए है, जैसे प्यार ने उन्हें भी सजा दिया हो। हर कली में छुपा एक नाजुक सा एहसास है जो दिल के बहुत करीब उतरता चला जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां भी जैसे किसी मुलाकात की कहानी सुनाती हो। हवाओं में बिखरी ये महक मन को धीरे धीरे उसके नाम से भर देती है। हर फूल अब एक संदेश बन गया है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और मैं उन फूलों में भी सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही छाया देखती हूँ।

जीवन की धूप जब तपती है तो तू ही वो ठंडी छांव बन जाता है। हर मुश्किल रास्ते पर तेरा साथ जैसे थके पांव को सहारा मिल जाता है। तेरी मौजूदगी में हर दर्द हल्का सा लगने लगता है, जैसे अंधेरा भी रोशनी से डरने लगे। मैं जब भी बिखरने लगती हूँ तो मुझे फिर से समेट लेता है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया का सुकून बन जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी की धूप में सिर्फ तू ही मेरी छाया है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च

न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए।

0: ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।